सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की दसवीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। यह फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना

0: संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन। विषय है आत्मविश्वास।
2: आज की ये सुबह कितनी सुहावनी है। सुनहली धूप में सारी धरती खिल उठी है। धीरे धीरे बहती हुई हवा के झोंके आ रहे हैं। पेड़ों की हरी हरी पत्तियां मस्ती में झूम रही हैं। चिड़ियां चहक रही हैं। फूल और पौधे मानो खुशी से नाच रहे हैं। छोटे छोटे की गाड़ियां भरकर बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपका हृदय इस आनंद मेले को देखकर हर्ष का अनुभव नहीं करता? क्या इस विराट संगीत समारोह में भाग लेने के लिए आपका मन आतुर नहीं हो उठता? तो समझ लीजिए, आप अपने जीवन में अनायास प्राप्त एक महान अवसर से हाथ धो रहे हैं। आप आज की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आपका शरीर आज की दुनिया में भले ही हो, पर मन अतीत के भोगे हुए क्षणों में उलझा है या भविष्य के बीहड़ जंगलों में भटक रहा है। और यही वो सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सुख चैन से जीने नहीं देती। हम वर्तमान को भोग नहीं सकते, लेकिन अनागत या अतीत के सपनों का निरर्थक ताना बुनने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर डालते हैं। फिर वर्तमान को अगर हम जीते भी हैं तो हारे थके मन से, मानो जीना नहीं चाहते, विवश होकर जीते। लेकिन ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई। अगर हुई भी तो उधार की हुई, अपनी नहीं। क्योंकि जहां स्वतंत्रता नहीं, जहां अपना कहने लायक भी कुछ नहीं, और जहां अपना कहने लायक कुछ नहीं हो, वहां भला सुखी कैसे मिल सकता है? कारण स्पष्ट है, जिंदगी सदा वर्तमान है। बीता हुआ कल मर चुका है, वो कभी लौट कर आने वाला नहीं। आगामी कल अभी आया नहीं, फिर हाथ में तो वर्तमान ही है। कोयल जब वसंत ऋतु में आम की डाली पर पंचम स्वर आलापती है, तब क्या उसके सामने अतीत की कोई घटना रहती है? या गुलाब के फूल जब बाग बागीचों में अपनी मुस्कान बिखेरते हैं, तब क्या वे भविष्य का कोई सुनहला स्वप्न देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके इस तरह सहज रूप से मुस्कुराने का रहस्य उनके वर्तमान पलों की तन्मयता में है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ को जब गीतांजलि नामक काव्य कृति पर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति उनके पास पहुंचकर बोला, क्या तुमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है जो तुमने अपनी कविताओं में बार बार उसके गुण गाए हैं? रविन्द्रनाथ उस समय तो कोई उत्तर नहीं दे सके, किंतु वो वृद्ध व्यक्ति भी सहज ही पिंड छुड़ाने वाला नहीं था। बार बार आ जाता और उनसे वही प्रश्न कर बैठता। एक दिन की बात है, कवि गुरु प्रातःकाल के भ्रमण से लौट रहे थे कि उन्हें सहसा एक विराट दर्शन की अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि वर्षा ऋतु के जो बादल रात भर बरसे हैं, अभी आकाश से कहीं दूर चले गए हैं और चारों ओर सुनहली धूप भी हंस रही है। सूर्य का प्रतिबिंब हजार हजार टुकड़ों में नीचे धरती पर पानी से भरे अनगिनत जलाशयों पर पड़ता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिबिंब अपने आप में पूरा है, एक भी खंडित या विकलांग नहीं है, सब में पूरा सूर्य उतरा है। रविंद्रनाथ इस अद्भुत दृश्य को देखकर चमत्कृत से रह गए। उनकी प्रसन्नता का पारावार उमड़ पड़ा। जिस पथ से वो घर लौटते, उसी के किनारे वो वृद्ध व्यक्ति भी रहता था। सदा की भांति आज भी उसने कविवर को अपने घर के सामने से जाते देखा और देखते ही फुर्ती से दौड़कर उनको घेर लिया। किंतु इसके पहले कि वो अपनी प्रश्न को दोहराए, रविंद्रनाथ की अपूर्व मस्ती भरी मुस्कुराहट को देखकर ही इतना मुग्ध हो गया कि उसके मुंह से निकल पड़ा, आज प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे मुखमंडल पर आनंद की आभा से ही मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सचमुच वो दिन धन्य होता है जब हम आज की अनुभूति में आनंद विभोर हो जाते हैं। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है, सही मायने में हम तभी जीते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आत्मविश्वास। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में यह भक्ति गीत। अगला भक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

अभी आपने सुना सोनू निगम और साथियों की आवाज में ये भक्ति गीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति गीत।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 होने को हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरित मानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। स्वस्वर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण के तहत अब आपको बता दे आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, विज्ञान वार्ता ये आप सुनेंगे 7:20 पर, गीत संगीत ये आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 8 बजे सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, मॉर्निंग मेलोडी ये आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर, 9 बजे से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, हेलो हजारीबाग ये आप सुनेंगे सुबह 10 बजे, 11 बजे से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, 1:10 पर प्रादेशिक समाचार सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से, 1:20 से पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, 2:55 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 3 बजे सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, संध्या 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, 4:02 से पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, 4:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी, संध्या 5 बजे सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

संध्या 5:02 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। खेती बारी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर। 6:00 सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 6:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7:00 प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झनकार। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स ये आप सुनेंगे संध्या 7:30 पर। 7:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम कानूनी सलाह। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा एक फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम का समापन होगा रात्रि 11:10 पर।

0: झारखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शारदा सिन्हा की आवाज में भोजपुरी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शारदा सिन्हा की आवाज में भोजपुरी लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। समय है विज्ञान वार्ता का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित वार्ता थ्री पेरेंट्स बेबी। वार्ताकार हैं त्रिषा राठौड़।
1: थ्री पेरेंट बेबी अर्थात वह संतान जिसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी DNA का अधिकांश भाग उसके मौलिक माता पिता का होता है, जबकि कुछ भाग किसी अन्य महिला से प्राप्त होता है। साधारण शब्दों में एक ऐसी संतान की उत्पत्ति जिसमें एक पिता तथा दो माताओं की भूमिका होती है। दुनिया के पहले थ्री पेरेंट बेबी यानी तीन अभिभावकों के संतान के जन्म की IVF टेक्निक सार्वजनिक हो गई है। वैज्ञानिकों ने इस टेक्निक से एक स्वस्थ बच्चे के जन्म देने में सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बच्चे के जन्म में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी MRT की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसकी मदद से माइटोकॉन्ड्रिया की गंभीर खामी के कारण होने वाली लीफ सिंड्रोम से बच्चे को बचाया जा सका। आइए जानते हैं क्या है यह नई तकनीक। नई तकनीक में मां के अंडाणु के एक न्यूक्लियर जीनोम को अन्य महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंडाणु के जीनोम से बदल दिया गया। इसके बाद अंडे का निषेचन कर उसे मां के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। इस तरह से बच्चे का जन्म दो मां और एक पिता से हुआ। इस तकनीक की सफलता में भविष्य में आनुवांशिक रूप से होने वाली जन्मजात बीमारियों से बच्चे को बचाना संभव हो सकता है। कोशिका एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका जीवन की आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। जीवन की सभी उपापचयी यानी मेटाबॉलिक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती है। कोशिका विभिन्न कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है, जिनमें कुछ प्रमुख कोशिकांग के माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय, अंतर्द्रवी जालिका आदि है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिस कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। किसी कोशिका में उपस्थित केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पूरे DNA का करीब 0.0005% DNA मौजूद होता है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। प्रजनन के दौरान होने वाली निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में जब अंड कोशिका यानी एग सेल एवं शुक्राणु यानी स्पर्म सेल मिलते हैं, तो शुक्राणु से केवल केंद्रक अंड कोशिका में प्रवेश करके भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो भ्रूण कोशिका है उसमें केंद्रक के अलावा समस्त कोशिकांग अंडकोश के ही होते हैं। इस प्रकार किसी भी जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ उसे उसके माता पिता दोनों से, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित DNA उसके विशुद्ध रूप से उसकी माँ से प्राप्त होता है। अब यदि किसी महिला के माइटोकॉन्ड्रिया में विकार हो तो वह विकार उसकी संतान में जाकर कई गंभीर आनुवांशिक रोग उत्पन्न करते हैं तथा ऐसे नवजात के बचपन में ही मृत्यु हो सकती है। इन रोगों में तंत्रिका संबंधी बीमारियां, छोटा कद, पेट और पाचन संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी बीमारी आदि भी शामिल है। इन्हीं विकारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से रोकने के लिए थ्री पेरेंट बेबी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कार्य प्रणाली। उपरोक्त आधारभूत समझ के बाद इस तकनीक की कार्य प्रणाली को

समझते हैं। इस प्रक्रिया में मूल महिला जिसका माइटोकॉन्ड्रिया विकार युक्त है कि अंड कोशिका से केंद्रक के किसी अन्य दाता यानी डोनर महिला जिसका माइटोकॉन्ड्रिया विकार रहित है कि केंद्रक रहित अंड कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। प्राप्त अंड कोशिका में केंद्रक मूल महिला का जबकि माइटोकॉन्ड्रिया तथा अन्य कोशिकांग दूसरी स्वस्थ महिला का होते हैं। इसके पश्चात इस कोशिका का निषेचन मूल रूप से प्राप्त शुक्राणुओं से कराया जाता है एवं प्राप्त भ्रूण को मूल महिला के गर्भाशय में प्रस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संतान की कोशिका के केंद्रक का आनुवांशिक पदार्थ उसे उनके मौलिक माता पिता से मिला है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए उसे अन्य स्वस्थ दाता महिला से प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि उत्पन्न संतान को थ्री पेरेंट बेबी कहा जाता है। विशेषताएं एवं सावधानियां। इस प्रक्रिया द्वारा विकार युक्त माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न आनुवांशिक रोगों जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ली सिंड्रोम आदि का उपचार सफलतापूर्वक किया जा सकता है एवं इस तरह के विकारों को दूसरी पीढ़ी में जाने से रोका जा सकता है। चूंकि यह प्रक्रिया पूर्णतः प्राकृतिक नहीं है तथा मानवीय हस्तक्षेप से युक्त है, अतः इस बात की भी संभावना रहती है कि उत्पन्न संतान में भविष्य में कई अन्य आनुवांशिक परिवर्तनों के चलते नए रोग उत्पन्न हो जाए। इसलिए इस तकनीक से उत्पन्न संतान को हमेशा चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाता है। थ्री पेरेंट बेबी तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल बच्चे में मां के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जेनेटिक विशेषताएं आती है, लेकिन अगर इस डीएनए में किसी तरह की खामी है तो बच्चा कई आनुवांशिक बीमारियों के साथ जन्म लेता है। इनमें कई तरह की बीमारियों को तो अब इलाज भी नहीं है। बच्चे को ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए यह कॉन्सेप्ट सामने आया है जिसमें दूसरी महिला से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेकर उसे मां के एग सेल्स यानी अंड कोशिकाओं में इंजेक्ट किया जाता है और फिर पुरुष के स्पर्म के एग के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। इस तरह से जो बच्चा होता है वह आनुवांशिक बीमारियों से मुक्त होता है। मेक्सिको में दुनिया के ऐसे पहले बच्चे ने जन्म लिया है जिसके तीन पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकली दो माँ और एक पिता। इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस तकनीक में एम्ब्रियो में तीन पेरेंट्स के डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक से जेनेटिक बीमारी रोकी जा सकती है। एक्सपर्ट्स इसे हेल्थ सेक्टर में एक नए युग का आगाज मान रहे हैं। उनका मानना है कि इससे जेनेटिक बीमारियों को बच्चों में जाने से रोका जा सकता है। तीन लोगों को डीएनए से बच्चे पैदा करने की शुरुआत 1990 के दशक में हो गई थी, लेकिन इस बार जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है वह पूरी तरह अलग है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन की इस टेक्निक की कानूनी रूप से कड़ी जांच की जरूरत है। इसमें यह भी सोचा जा रहा है कि बच्चा बड़ा होकर अपने तीन पेरेंट्स होने की बात को किस तरह से लेगा। थ्री पेरेंट बेबी का पहला कानून। माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर को सबसे पहली बार 2015 में यूके में कानूनी रूप से वैध बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक किसी भी देश ने इस तकनीक का इजाजत देने के लिए कानून नहीं बनाया है। यूके फर्टिलिटी क्लिनिक के नियामक ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीक के सतर्क उपयोग की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। यह तकनीक बच्चे को आनुवांशिक बीमारियों से बचाने के लिए दूसरी महिला डोनर से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के डिंब के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को बदल देता है। इस तकनीक का उद्देश्य उन माता पिता की मदद करना है जिनमें अपने बच्चों को कमजोर और यहां तक कि घातक आनुवांशिक रोगों को देने का जोखिम अधिक है। गंभीर नीतिक और चिकित्सीय चिंताओं के बावजूद और ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी द्वारा प्रक्रिया को अनुमति किए जाने के बाद भी थ्री पेरेंट बेबी को कानूनन जायज बनाने वाला यूके पहला देश बन गया है। एचएफईए द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के पैनल द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर अपनी चौथी समीक्षा प्रकाशित करने के दो सप्ताह बाद यह फैसला किया गया। पैनल का यह मत भी था कि इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ विशेष मामलों में जहां माताओं का अपने बच्चों में माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी

0: वहन करने का जोखिम है और इसे रोकने के लिए की जाने वाली वैकल्पिक चिकित्सा बहुत कम या बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है, उसके लिए भी किया जा सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता थ्री पेरेंट्स बेबी। वार्ताकार थे त्रिषा राठौड़। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम गीत संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

अभी आपने सुना अभिजीत की आवाज में ये गीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी

0: दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है

0: तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी TET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे।

0: का मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 आज से लागू। 100 की जगह 125 दिनों का मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे में प्रभावित सभी 42 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। ट्रेन से झारखंड के लिए हुए रवाना। अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला के एसपी पद से हटाए गए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे शपथ। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया है। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रूपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम न हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15-25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस रिसाव हादसे में प्रभावित झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित ट्रेन से झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं। श्रम विभाग और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने तमिलनाडु प्रशासन, रेलवे और अस्पताल प्रशासन के साथ समन्वय कर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। इस हादसे में धनबाद की प्रीति देवी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। झारखंड सरकार ने मृतका के परिजनों को नियम अनुसार मुआवजा और अन्य वैधानिक लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे और सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी को उनके वर्तमान पद से हटाने का निर्देश दिया है। विधि व्यवस्था नियंत्रित करने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों को रोकने में लापरवाही के कारण पद से हटाने का आदेश दिया गया है। वहीं आयुक्त चाईबासा और एडीजी रांची को लगातार कैंप करने का आदेश दिया गया है। डीआईजी भी जमशेदपुर में ही कैंप करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बार के बाहर चाकूबाजी और हत्या के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। जोनल एडीजी सह एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक ने कल घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: तो इसमें लापरवाही हुई है, कुछ चूक रही है, तो जिस जिसकी भी लापरवाही और चूक है उनपे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं। पूरा रिव्यू करेंगे, उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उसपे एक्शंस होंगे। और साथ ही साथ इंसिडेंट जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और जितने साथ में उनके को एक्यूज, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम बाउंड तरीके से तो टीम्स को निकाला गया है और जैसे ही टीम्स निकलेंगी उसके बाद में इस पे डेफिनेटली।
0: धनबाद के सोनारडीह ओपी क्षेत्र के टंडाबाड़ी में भूधसान प्रभावित इलाके को खाली कराने की दिशा में कार्रवाई करते हुए कल बीसीसीएल प्रबंधन ने 21 अवैध आवासों में से

0: 16 को ध्वस्त कर दिया। बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि यह क्षेत्र भू धसान की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी संभावित हादसे से लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11:30 लोकभवन में आयोजित होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चारों नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा में छूट से संबंधित सभी याचिकाओं का निस्तारण किए जाने के बाद जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि अधिकतम आयु सीमा तय करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है और सरकार पहले ही अभ्यर्थियों को 4 वर्ष की आयु सीमा में छूट दे चुकी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कई जिलों में हुई अवैध पेड़ कटाई मामले की जांच में हो रही देरी पर राज्य सरकार और सीआईडी को फटकार लगाई है। अदालत ने जांच को केवल पलामू तक सीमित रखने पर चिंता जताते हुए पूरे मामले में संभावित बड़ी साजिश की व्यापक जांच कर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 2 उग्रवादी को पिपरवार से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि कई मामलों में वांछित दोनों उग्रवादी लंबे समय से फरार चल रहे थे।
1: टीपीसी के 2 क्रियावादी सक्रिय क्रियावादी मसीह टिग्गा और किरण नगड़वार, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूर्व से भी पिपरवार थाना कांड संख्या में वांछित थे, फरार चल रहे थे। कल एक विशेष सभा में अंतरी दल का गठन करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया।
0: खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के एक फास्ट फूड दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी अवैध शराब जब्त की गई है। डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि दुकानदार को गिरफ्तार किया गया, इसके साथ 5 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है।
2: में अड़की बाजार में कुछ अवैध शराब की खरीद बिक्री हो रही है, उसके सूचना पर हम लोग ने छापेमारी की गई। कुल 460 बोतलें बरामद हुई जो विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें हैं। उसके बाद एक व्यक्ति जो पकड़ाए हैं, फास्ट फूड का दुकान चलाते हैं उनके भाई के साथ।
0: मौसम विभाग ने राज्य में 8 से 4 जुलाई तक तेज बारिश, वज्रपात और तेज हवा की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम दौरे के लिए 22 सदस्यों की जूनियर अंडर-21 पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। मैच 5 से 18 जुलाई तक खेले जाएंगे। भारतीय टीम की कप्तानी अनमोल एक्का को सौंपी गई है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 और 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच से करेगा। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की कार्रवाई की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पूर्वी सिंहभूम एसएसपी और सरायकेला एसपी हटाए गए, एडीजी संभालेंगे कमान। हिंदुस्तान के शब्द हैं, राज्य के 48 शहरी निकायों में एफएसटीपी बनाएगी सरकार। दैनिक जागरण ने लिखा है, वेतन निकासी मामले में एसआईटी ने 21 बैंक खातों को कराया फ्रीज। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड के 12 जिलों में सूखे का साया, अब तक 54% कम बारिश। और अब अंत में मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 आज से लागू। 100 की जगह 125 दिनों का मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे में प्रभावित सभी 42 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। ट्रेन से झारखंड के लिए हुए रवाना। अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर जमशेदपुर के

एसएसपी और सरायकेला के एसपी पद से हटाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे शपथ। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आपके साथ है आपका दोस्त विनोद। बने रहे हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों के साथ।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

0: मॉर्निंग मेलोडी में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लव स्टोरी से यह गीत आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: का कोई मॉडल पुराना लगता है।
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चांदनी से, लता मंगेशकर की आवाज में।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। बिधान चंद्र रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विश्वभर में चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है। इसलिए हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को आज सलामी देते हैं और इस विशेष दिन यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे की उन सभी को सम्मान के साथ बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत दिल का रिश्ता। इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में समीर के बोल, नदीम श्रवण की बनाई धुन।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परदेसी बाबू। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। सुधाकर शर्मा ने इस गीत की रचना की है और तर्ज बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती

0: बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा ये गीत, अर्का याग्निक, अभिजीत की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है जुदाई।

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश, अलका याग्निक का गाया गीत, समीर की रचना, हिमेश शमिया का संगीत, फिल्म का नाम जूली।

जूली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक से अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूजा नरानिया को आज्ञा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिए आगे के कार्यक्रम विविध भारती के संग।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो टल गया। तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
2: It's 10 o'clock.

0: देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग
2: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही अंजलि का नमस्कार। दोस्तों, हंसना जीवन की सुंदरता है, पर वह हंसी तभी सार्थक है जब किसी के हृदय को पीड़ा न पहुंचे।

सपने देखना आवश्यक है, पर ऐसे नहीं कि किसी और की शांति और नींद छिन जाए। उन्नति करना हर व्यक्ति का अधिकार है, पर सच्ची तरक्की वही है जो किसी को गिराकर नहीं बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़े। सफलता प्राप्त करना श्रेष्ठ है, पर यदि सफलता के बदले संस्कार, विनम्रता और मानवता खो जाए तो वह सफलता अधूरी है। ईश्वर की दृष्टि में वही व्यक्ति महान है जो अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में सुख, सम्मान और प्रेरणा का प्रकाश फैलाता है। जीवन में ऐसे बनो कि आपकी सफलता से किसी को दुख नहीं बल्कि प्रेरणा मिले। तो दोस्तों, सफलता पाने के लिए हर तरह से हर क्षेत्र में मेहनत करें और आगे बढ़ें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, आज 1 जुलाई है तो भारत में प्रतिवर्ष वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में यानी 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। इसकी शुरुआत सन 1950 में हुई थी। वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों के बीच पेड़ों के प्रति उत्साह जगाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वनों की कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। साथ ही भारत के हरित आवरण को बढ़ाना और लोगों को प्रकृति के करीब लाना था। देश भर में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर वनों के घटते दायरे को सुधारा।

करना है। वनों की कटाई से होने वाले नुकसान से लोगों को अवगत भी कराना है। इन सब के साथ साथ सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाकर वृक्षारोपण की आदत को भी प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, वन महोत्सव तथा वनों का महत्व भी बहुत है। पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को अवशोषित कर हवा को शुद्ध करते हैं। साथ ही जंगल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करती है। दोस्तों, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे भूमि का कटाव रुकता है और जल स्तर बढ़ता है। वन महोत्सव ऐसे फलदार और चारा देने वाले पेड़ लगाने को भी प्रेरित करता है, जो स्थानीय आजीविका और कृषि का समर्थन करते हैं। इस बात का हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि अपने आसपास तथा परती जमीन में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। तो दोस्तों, बातें आगे भी होंगी, अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1991 से हुई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रख्यात चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन जीवन बचाने और जन स्वास्थ्य में सुधार लाने में डॉक्टरों के समर्पण और सेवा को मान्यता देता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और बीमारी और स्वास्थ्य होने के हर चरण में रोगियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टरों के समर्पण, विशेषज्ञता और करुणा को पहचानने का एक अवसर है। ऐसे तो डॉक्टरों की सेवा को हम लोग हमेशा सम्मान देते हैं, क्योंकि जो भी मरीज हो, पेशेंट हो, वो जितने भी कष्ट में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो उन्हें डॉक्टर नया जीवन देते हैं, उनके जीवन को बचाते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं, कष्टों से उन्हें निजात दिलाते हैं। तो इसलिए 1 जुलाई ही नहीं बल्कि चिकित्सक का सम्मान हमेशा करना चाहिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आज 1 जुलाई है, तो जानते हैं भारत में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आज ही के दिन 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना आधिकारिक रूप से की गई थी। 1991 में भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की शुरुआत हुई। यह दिन भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. विधान चंद्र रॉय को समर्पित है, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई को ही होती है। 1997 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता चंद्रशेखर सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म हुआ था। 1917 में आज ही के दिन भारत में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार लागू हुआ, जिसे वस्तु एवं सेवा कर GST के नाम से जाना जाता है। इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। 1867 में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के तहत कनाडा को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला, इसलिए आज के दिन कनाडा अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। आज ही के दिन 1874 में सोल्स एंड ग्लिडन टाइपराइटर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ, जो व्यावसायिक रूप से दुनिया का पहला सफल टाइपराइटर था। 1881 में दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की गई थी। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया, जिसने औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। दोस्तों, जानकारी की बातें आगे भी करेंगे, अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, अब जानते हैं कि 1 जुलाई को किन महान लोगों का जन्म हुआ। तो कार्यक्रम में तो हम पहले भी बता चुके

के कि आज के दिन ही डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था, जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। आज ही के दिन कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1962 में। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला और प्रसिद्ध एरोस्पेस इंजीनियर का जन्म 1 जुलाई 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। वीर अब्दुल हामिद, आज ही के दिन 1965 में भारत पाक युद्ध के नायक और परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक का जन्म 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब जानते हैं कि आज के दिन किनकी पुण्यतिथि है। तो आज ही के दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म भी हुआ था और निधन भी हुआ था आज ही के दिन। पुरुषोत्तम दास टंडन, आधुनिक भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और भारत रत्न से सम्मानित पुरुषोत्तम दास का जन्म का निधन 1 जुलाई 1962 को हुआ था।

दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज के मौसम पे। तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ दोपहर से लेकर शाम तक गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट भी आ सकती है। और आज का अधिकतम तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 21 डिग्री सेल्सियस। और कल यानी 2 जुलाई के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिकतम तापमान रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। और आज सूर्यास्त का समय है 6:45 और कल सूर्योदय का समय है 5:09 पर। आर्द्रता की बात करें तो अधिकतम आर्द्रता है 69% और न्यूनतम है 40%। तो मौसम को देखते हुए अपना सभी काम को करें और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ध्यान रखें।

दोस्तों, अब नजर डालते हैं समाचार की सुर्खियों पर। तो अमित शाह ने लॉन्च किया FCIRA पोर्टल और ई OCI कार्ड। OCI कार्ड के लिए अब फिजिकल दस्तावेज देने की जरूरत खत्म हो गई। जनरल धीरज सेठ बने देश के 31वें

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: 10, 9, 8, 7, 6,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

फिल्म ताजमहल की ये कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और मीना कुमारी की आवाजों में। साहिल ध्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।

0: नशा एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, ये गजल आप सुन रहे थे बिनाज मसानी की आवाज में। कतील शिफाई का कलाम था, पेलोडी मसानी की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विकी डोनर फिल्म से। आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का लिखा ये गीत था। रोचक कोहली आयुष्मान खुराना की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल, रफीक हुसैन और रफीक जयपुरी की लिखी ये गजल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: पामेला सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे सईद राही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: विजु शाह का सर्वधिकया ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई गांवों में खिली।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलीशा चिनॉय को आपने सुना एल्बम थी मेड इन इंडिया, अलीशा चिनॉय बिड्डू और श्याम अनुरागी का लिखा ये गीता बिड्डू की तर्ज थी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक

0: पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की।

0: राहुल देव बर्मन की तर्ज थी मंजूर सुल्तान परी की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म थी तीसरी मंजिल।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा संगीत था सचिन देव बर्मन का। फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: कोबी नैयर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर

0: काफी दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से, कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना पिया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: उनकी गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या?

इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हंस तेरा रंग।

अपने दिल से लगा लूं, जमीन पर तुझे मैं खुदा से मिला दूं। ऐसी करूंगा मैं दीवानी मस्तानी, ओ जानी जरा नजरे मिला ले समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग।

खरे खरे जाती है क्यों परे परे तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बसा दूं मैं पास अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए दिल क्यों धड़कता है तुझको

सीधा लगे पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम सुरीला सफर में, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, मौसम कोई भी हो, कहीं रिमझिम की फुहार है, कहीं सूरज की तपिश, ये आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे आजकल। तो मौसम कोई भी हो, हर पल आपके संग है विविध भारती, आपके रेडियो सेट पर है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बातें हैं और हम हैं, आप हैं, साथ साथ कार्यक्रम है सुरीला सफर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज की इबारत को लेकर अपनी बातें लिखी हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे हैं। तो बस आप अपनी जो है बातें लिखिए, और आप को लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai, और हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। और अब आज की इबारत आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? क्या सचमुच पलकों के पीछे छुपकर कोई कुछ कह जाता है? क्या काजल सचमुच नैनों में बसता है? हो ना हो, लेकिन ये गलत फहमियों का जहाँ भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। रेत का समुंदर जरा सोच कर देखो, अगर ये दिल ना होता, जज्बातों का रंग महल, जितने दरवाजे उतने पहलू, उतने अरमा उतनी ही ताबीरें। इश्क के असर को छुपाए कि मोहब्बत क्या सचमुच लाखों में एक हसीन होती है, या फिर शायद कस्तूरी की तरह जो चोरी चोरी चुपके चुपके शाही पान में खुशबू बिखेर जाती है। न रखो गलत फहमियाँ, न पूछो भला शबनम मुस्कुराती कब है, रात कब जागती है। देखो कि दिल टूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, खुशफहमियों का जहां कुछ रहने भी दें, जब सुलझ जाए गलत फहमियों की रेशमी डोर, बदगुमानी के बादल जब हट जाएं, जब मोहब्बत के दीप जले तुम आ जाना। अजब फहमी गलत फहमी के दरमियान हूँ इबादत, मैं तुझे लिखती हूँ कि तू मुझे लिखता है।

श्रोताओं, आप समझ ही गए हैं कि आज दरमियान होती गलत फहमियों की बातें हम करने जा रहे हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो बातें हैं वो इसको लेकर लिखी भी हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी गलत फहमियों का दौर आया और आपने इस दौर को किस तरह, किस खूबसूरती से निभाया, ये आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि कई बार गलत फहमियाँ जो होती हैं वो होती हैं और बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलत फहमियों के बावजूद भी बड़ा प्यार उमड़ता है। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अभिनेत्री नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था द ट्रेन फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, आर डी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम खुशफहमी और गलत फहमी के माया जाल में जकड़े हुए हैं, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम तारीफ के काबिल हैं, जब भ्रम टूटता है तो गलत फहमी का सत्य स्वीकारना पड़ता है। और इन्होंने गीत जो चुना है जब दीप चले आना, तो देखते हैं कि कौन कौन से गीत आज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वैसे आज की फिल्में भी आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियां थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियां भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज, जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को दी नई दिशा और देश के समग्र विकास को दी गति। सशक्त हुए नागरिक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नए सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। लोकभवन में आयोजित हुआ समारोह। जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ। उम्र सीमा विवाद पर हाईकोर्ट ने खत्म की सुनवाई। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट की लागत अब होगी 2500 रुपए। और आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है और डिजिटल इंडिया ने नवाचार को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। वीबी जयराम जी को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। मनरेगा से बेहतर योजना, जिसमें 100 नहीं बल्कि 125 दिन के रोजगार का प्रावधान है, वीबी जयराम जी आज से लागू हुई है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कल मनरेगा का समापन हो गया और मनरेगा से बहुत बेहतर योजना, जिसमें 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार मांगने पर मजदूर बहनों और भाइयों को दिया जाएगा, विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार

0: ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। यह दरें आज से लागू हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: लोक भवन रांची में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य सूचना आयोग के 4 नए सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्यपाल के नियुक्ति आदेश को पढ़कर सुनाया।
3: झारखंड राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति आदेश ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को झारखंड राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के पद पर अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से नियुक्त करता हूँ। 1. श्री अनुज कुमार सिन्हा, 2. श्री तनुज खत्री, 3. श्री अमूल्य नीरज खलको, 4. श्री शिव पूजन पाठक। मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा से आज दिनांक 8 जून 2026 को लोक भवन रांची में दिया गया। संतोष कुमार गंगवार, झारखंड के राज्यपाल।
1: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी के राजू 2 से 6 जुलाई तक राज्य के संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रांची सहित कई जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। रांची में हुई फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक में झारखंड की औद्योगिक संभावनाओं, उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देने के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस बैठक में शिक्षाविद लक्ष्मी नारायण गोयल ने रोजगार सृजन, व्यापारिक वर्ग की भूमिका तथा खनिज संपदा के बेहतर उपयोग के लिए आधुनिक तकनीक और वैश्विक सहयोग पर बल दिया। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2,500 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब 3,500 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत ये 6,000 रुपए होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा में छूट से संबंधित सभी याचिकाओं का निस्तारण किए जाने के बाद जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि अधिकतम आयु सीमा तय करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है और सरकार पहले ही अभ्यर्थियों को 4 वर्ष की आयु सीमा में छूट दे चुकी है। कोडरमा के डोमचांच निवासी युवा उद्यमी सचिन प्रजापति ने 15 तरह के शहद निर्माण में सफलता हासिल करते हुए कई युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी है।

0: मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई के तहत 35% अनुदान पर उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया। आज उनके उत्पादों की मांग देश के विभिन्न राज्यों से आती है।
1: इसका शुरुआत 2023 में किए थे, इंटरनेट के थ्रू इसके बारे में जानकारी मिला, फिर इसको हम एक्सप्लोर किए। एक्सप्लोर करने के बाद फिर अब देखिए फैमिली के साइड से भी अच्छा सपोर्ट हमको रहा, शुरू से ही बनते रहा, तो शुरू में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था, देन फिर धीरे धीरे करते करते प्रयास करते करते फिर अभी हम लोग ग्रुपिंग में बी कीपिंग कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमको पीएमएफएमई की तरफ से प्लांट सेटअप करने के लिए सरकारी मदद मिला, उसमें 35% अनुदान है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 4 और इंडिगो की 1 नियमित उड़ान का परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इन उड़ानों के बंद होने से रांची से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता आने जाने वाले यात्रियों को अस्थायी रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिससे अगले 4 दिनों तक राज्यभर में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मॉनसून ने राज्य को कवर कर लिया है।
2: झारखंड में जो कवरेज थोड़ा सा बचा हुआ रह गया था पलामू और गोड्डा जिलों के कुछ हिस्सों का, आज वो भी कंप्लीट हो गया है और पूरे झारखंड में मॉनसून कवर करता हुआ अब यूपी तक भी पहुंच गया है और आगे देखा जाएगा कि उसका स्थिति क्या बनता है, आगे और डेवलप करता है, किस दिशा में जाता है, क्योंकि उसका जो दिशा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारे इलाके से गुजरेगा तो और अच्छा बारिश होगा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को दी गति, सशक्त हुए नागरिक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नए सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। लोकभवन में आयोजित हुआ समारोह। जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ। उम्र सीमा विवाद पर हाईकोर्ट ने खत्म की सुनवाई। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट की लागत अब होगी 2,500 रूपये। और आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी, समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं श्रोताओं। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीता। इस फिल्म में बड़ी अजब सी गलतफहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आंखों में काजल, नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलत फहमियां किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है श्रोताओं। गलत फहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियां हैं वो और गलत फहमियां, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की जरूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती हैं, गलत फहमियां रिश्तों में दूरियां बढ़ाती हैं, जबकि खुशफहमियां मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुशफहमियां रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओ, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलत फहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हो गए। इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेल थीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास, उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समंदर जैसा बंजर हो जाएगा। जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है। ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो है जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है, और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती है कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी हैं।

इस गीत में श्रोताओं और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं, क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुशफहमियां और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमियां जिंदगी में अक्सर गलत फहमियां हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुशफहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है। लेकिन ये तो कोरा

होता है वो तो उसकी नाभि में होती है, इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये गलतफहमियां पैदा करती हैं और कभी कभी ये जब खुशफहमियां बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि गलतफहमी पे मैं बताना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा है, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाएं और धर्मपत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं। तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो अमोल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलत फहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे। तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीफ देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही हैं जो असल जो चोर हैं, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

तो ये दो सहेलियां हैं, वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं।

कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनो में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहाँ होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलतफहमियां आवाज में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर लिखें। और सफर के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

की कसम फिल्म का ये गीत था मुमताज पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और श्रोताओ दो जो कलाकार हैं गायक कलाकार उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखती हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मेरे महबूब फिल्म के बारे में कि अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नज़र आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज़्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतज़ार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चित्चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं, तब आप और हम यही कहते हैं।

दोस्तों, ईश्वर के बाद जीवन दायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं, तो बदले में उन्हें भी आप सम्मान दें।

कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हो या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में जब कोई डॉक्टर मुस्कुरा कर कह दे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला है, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस

0: योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय

0: गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
4: India's engagement.
5: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
4: इंक्लूडिंग एमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या यार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष

0: के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सावरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा।

इकराज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन इकराज की फिल्म का नगमा, उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। देश में आज डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। इस अभियान ने सुशासन को नई दिशा देने के साथ साथ देश के समग्र और समावेशी विकास को नई गति प्रदान की है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश में पोषण निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर के जरिए भारत में पारदर्शिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये डिजिटल सिस्टम रियल टाइम डैशबोर्ड, जियो टैग्ड आंगनवाड़ी केंद्रों और टेक होम राशन वितरण के लिए फेस रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से काम कर रहा है। उन्होंने स्मार्ट न्यूट्रिशन स्मार्टर नेशन का नारा देते हुए इसे कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रांची के लोकभवन में आज एक गरिमामय समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के 4 नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, शिवपूजन पाठक और अमूल्य नीरज खलको शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी नवनियुक्त आयुक्तों को बधाई देते हुए पारदर्शिता और जनहित में काम करने की उम्मीद जताई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। राज्य में हाल ही में हुई कुछ आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की प्रशासनिक विफलता पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का आरोप है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है।
2: 1000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है और सरकार का सजा दिलाने का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अब राज्य सरकार ने जनता के बढ़ते दबाव के कारण सरायकेला के SP और जमशेदपुर के SSP का तबादला किया है और जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बनकर रहेगा, जब तक योग अफसरों की फील्ड में पोस्टिंग नहीं होगी, ऐसी घटनाएं पर रोकथाम बिल्कुल नहीं होगी।
0: दूसरी ओर सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की

किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार लोहे के चक्के लदे एक अनियंत्रित ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया, जिससे आगे चल रही कई कारों और मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और राहत कार्य तेजी से जारी है। राजधानी रांची के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक महीने का विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 1 जून से 30 जून तक चलाए गए इस सघन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 1,24,144 चालान काटे गए। इसके अलावा गंभीर उल्लंघनों को लेकर कुल 831 मामलों को अभियोजन के लिए माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना।
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: हाँ, और बहुत अच्छा लगता है। अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी। बिल्कुल,
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है। बिल्कुल, बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे। जैसे आजकल कह देते, अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना, एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए।
2: बिल्कुल, तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम।
2: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
1: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
2: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ

0: जो होती है
1: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
0: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता है, कोई बात नहीं, चलो उसने आगे किया, अब हम भी अच्छा करेंगे। एक होती है कि उसने कैसे किया,
1: मैं
0: उसको पीछे खींचे। वो आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में।
1: आपके कहने का मतलब ये है आरती, कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है, वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
0: और पीछे भी खींचती है,
1: पीछे भी खींचती है। आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे,
0: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
1: अच्छा,
0: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं, इसलिए ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: उनकी राय मांगते हैं। फिर वो जब कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं, तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे हम बात करेंगे।
1: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं, और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है, कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया।
0: जी बिल्कुल, आप बताइए।
1: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले। और
0: देखो ये आप बस मेरे साथ में ऐसा मत करा करिए,
1: व्यंजन लेके आई है।
0: जी बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ, और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आती है, पकौड़ों की तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना, उसके साथ पकौड़ों की
1: गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए। बिल्कुल सही कहा
0: जी।
1: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं, कई तरह के पकौड़े,
0: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
1: कौन से बेसन के, और
0: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच ले, कल्पना करके उसको हम खा ले।
1: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सखी और सखा, और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम हो रहा है।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं, हाँ। और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं,
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, है ना
1: जी। बिल्कुल,
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
1: जी,
0: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए, ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
1: जी।
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है
1: जी। ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना, कि आधी जो बीमारी होती ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे, और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं।

0: हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है. तो वो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है. तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं, तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे.
1: बिल्कुल सही कहा. और जैसे आरती, आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही है. तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है.
0: और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसा खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं. तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते. अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं.
1: बिल्कुल सही कहा. और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके. और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती की, हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है. कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा.
0: जी हाँ,
1: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है.
0: बिल्कुल.
1: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए. अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ. तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे. और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे.
0: बिल्कुल. और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी. अगर हम कोई हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है. तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं.
1: बिल्कुल सही कहा. और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए. छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना
0: कंट्रोल
1: चाहिए. जैसे अब आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना हमारे श्रोता, तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी.
0: बिल्कुल. और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं. कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर समय नहीं.
1: बिल्कुल. अच्छा, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए. और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए.
0: ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं. और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होता है वो सादा भोजन.
1: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है.
0: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं.
1: बहुत तरीके हैं खाने के,
0: बहुत अच्छा लगता है.
1: तो हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं. वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहें या उनके पास इलाज के लिए आए. उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहें, स्वस्थ रहें.
0: तो हमारे जो श्रोता है वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं. उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है. उनका निदान सटीक रहता है. अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं. तो ये कहते हैं ये.
1: बिल्कुल. और भी किसी ने कुछ लिखा?
0: बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल. एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसके बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है. अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है. और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे. कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था. और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे. और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए. लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
1: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि

0: पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: जी, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
0: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कम्प्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाएं।
1: बहुत अच्छी बात है। तो और एक महिला है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
1: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ही ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए, अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है।
1: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अब ये आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
0: जी,

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में जी, महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिरदर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे हाँ। थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी

0: भी हो जाता है, साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता
0: है कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं, और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल।
1: ये हाथ से अब मेहनत से
0: बनाई जाती है, और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है, और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है। ये
1: बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना?
0: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था आप कहने वाली हैं।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं, जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारी सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को

0: प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारी श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्मविकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लें, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना असुरक्षा की।

0: भावना कहते हैं।
1: जी
0: और आरती सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं, कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
1: बिल्कुल,
0: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
1: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके,
0: हाँ,
1: तो सबसे बड़ी बात ये होती है
0: प्रतियोगिता
1: उसके चेहरे की हंसी देख के, हाँ, ही आपको लगेगा कि
0: मजा
1: नहीं,
0: आता
1: हमने।
0: अब बच्चों
1: अच्छा
0: से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता,
1: अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसको मजबूत रखिए।
0: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत, अगर आप हार कर भी आपका मन नहीं हारा है फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं जीतने वाले हैं जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें
1: वो मनोबल जो होता, हाँ, है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
0: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में जो जरूरी भी है तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाक नहीं जी, अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन, और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
0: ऐसी तो मतलब सोच नहीं सकते,
1: बिल्कुल। इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए, और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें, और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर, और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए आंटी जी।
0: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि पकौड़े निकल ही रहे,
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
0: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
0: और हमारे जो एक हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत, पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया है ना।
0: मैंने कहा ना
1: और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है, और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश

0: के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक
1: जी
0: श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर, मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा, घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए और छमा छम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी, तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए, पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें, और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं, और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो अब पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद भी
1: सुन लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे है ना। और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: खोल दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज रांची में घोषणा की कि 2 जुलाई को जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद रहेगा। सरायकेला खरसावा के RIT थाना पुलिस ने एक दुकान में घुसकर रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बीती 30 जून को पीड़ित प्रेमचंद वर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन पब हत्याकांड के मृतक हिमांशु सिंह के सरायकेला खरसावा स्थित आदित्यपुर आवास पर आज प्रशासन और परिजनों के बीच अहम वार्ता हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय भी मौजूद रहे। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में पीएम सड़क योजना, पीएम आवास और कुसुम योजना के तहत हुए विकास कार्यों की प्रगति की साझा की। साथ ही उन्होंने बरकाकाना रेलवे स्टेशन के कायाकल्प और कोडरमा रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य की भी जानकारी दी। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के चापुड़िया गांव में आज हुए एक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई, जबकि 8वीं कक्षा की एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल छात्रा को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जामताड़ा पुलिस ने नारायणपुर और करमानटाड़ थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 7 फर्जी सिम कार्ड और 1 दुपहिया वाहन बरामद किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश के सभी समर्पित डॉक्टरों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने चिकित्सकों को स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण का सच्चा आधार बताया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दिया मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने BA किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में MA किया
2: जी।
1: 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से BEd किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ
2: जी। तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे
1: जी,
2: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी बचपन से ही?
1: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियां, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था
2: जी। तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
1: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है
2: जी।
1: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूं ठीक से, उनको बोलता भी हूं। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
2: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
1: जी जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
2: अच्छा।
1: धर्मयुग, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
2: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
1: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी।

0: उसका शीर्षक था अपराजेय, और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी, मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लोक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृत मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं, ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती है। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है, और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था, उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी,
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा, और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राढ़ी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी, और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली, और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी,
1: मिला
0: जी।
1: तो राढ़ी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या बात?
0: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: शंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था, और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है, जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है। ये सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो। जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है, वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी,
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग जो

0: है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना
1: जी,
0: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का
1: जी,
0: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे
1: जी।
0: तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है
1: जी, जी।
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे है, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है, पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाया जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है, अखबारों ने पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य सनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा, बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधि में मिलेगी
1: जी। तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है, कबीर ने कहा। तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है
1: जी।
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी है, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगी। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई,
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था, पाठक का
0: हाँ बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं
1: जी।
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है
1: जी। बिल्कुल जी। बिल्कुल। क्योंकि जगह

0: जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है
1: जी
0: और व्यंग्य विधा में हाथ आजमा रहा है।
1: जी
0: अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं,
1: जी
0: हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं
1: जी
0: और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं।
1: जी
0: तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
1: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है। मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूं
0: जी
1: और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन
0: मन
1: मेरा,
0: मेरा
1: लिख लिया नाम
0: इसमें
1: तेरा।
0: तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है। जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है। प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी।
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
0: जी।
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं पाया। जी,
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 4:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआर

0: IIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धर्मवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
0: मूल्यवान भी है, रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार, मीट्रोइड

0: बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
0: जी।
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी।
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरी

0: ऐसे स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
1: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
0: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानि अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: जी मैम। यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
0: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि

0: आदि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।

0: के पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
1: मुखिया जी, मुखिया जी!
4: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि
4: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
4: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
4: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते।
4: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
4: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
4: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
4: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
4: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी, मुखिया जी,
4: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
2: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
4: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
4: नालायक,

0: डरपोक।
1: अरे भाग रहे हो,
0: इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
0: अरे ये तो सचमुच चला गया।
3: कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ,
0: छत से देखता हूं मैं।
3: ये कैसा भयानक दृश्य है। दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो?
0: अरे ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान, इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, अरे कहाँ जाऊं मैं, ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है, कोई है, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या,
3: ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है।
0: अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह, मैं उसे पकड़ लूं तो मैं भाई। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
3: आखिर पहुंच गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, संध्या के 5 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: सकते हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक की मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। रांची में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने जून महीने में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पूरे महीने

0: का वितरण और संग्रहण करेंगे। साहिबगंज के समाहरणालय परिसर से आज उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने कृषि विभाग द्वारा संचालित बिरसा कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जिले के सभी प्रखंडों की पंचायतों में खरीफ मौसम से पहले किसानों को आवश्यक कृषि तकनीकों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आज हजारीबाग के जिला संयुक्त औषधालय आयुष भवन में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएन तिवारी के नेतृत्व में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने केक काट कर यह विशेष दिन मनाया। राष्ट्रीय चिकित्सक और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के अवसर पर गिरिडीह में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृति द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शहर के प्रख्यात चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 5:02 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

दोस्तों, भी आपने सुना कुमार सानू की आवाज में फिल्म प्यार तो होना ही था से लिया गया ये खूबसूरत सनगमा। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, भी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गाया ये खूबसूरत सा गीत। अब ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म दुश्मन से।

हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी।

दोस्तों, अभी आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में फिल्म राज से लिया गया ये प्यारा संगीत। अब आइए सुनते इस कार्यक्रम का अंतिम नगमा अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाय सी गीत के साथ कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 5:30 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी।

एफएम 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, संध्या के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है हमारे ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित करता कार्यक्रम खेती बारी।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कार्यक्रम खेती बारी सुने वाले सभी ग्रामीण श्रोता के ममता के दने से प्रणाम जोहार और स्वागत है नी कार्यक्रम में। तो आज हम आगे लिए तोहरा साथ ढेर सारा बात करे लगे कार्यक्रम के जरिए। तो सबसे पहले हम बता दिए कि आज कार्यक्रम की शुरुआत हम में बात करबे कि आज 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनावल जाए, एकर बारे में बात करबे। साथे साथे जुलाई के महीना में हम कौन कौन कृषि कार्य करबे और ओकर बारे में हम बात करबे, और साथे साथे जरूरी संदेश मनोरंजन लगी गीत नाद है, और साथे साथे हम जानकारी भी लेके अले हिए। तो सबसे पहले हम बात करबे ग्रामीण श्रोता कि आज 1 जुलाई के अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनावल जा है। ई दिवस हमनी के प्रकृति के अनमोल उपहार फल के महत्व के समझे और अपन रोज के जीवन में हिस्सा बनावे के प्रेरणा देवो है। फल केवल स्वाद न है बल्कि बढ़िया स्वास्थ्य के आधारशिला भी है। एकरा में विटामिन, खनिज लवण, फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पावल जा है। हमनी के शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे, पाचन तंत्र के स्वस्थ रखे और हृदय, मधुमेह और मोटापा जैसन अनेक बीमारी के जोखिम के कम करे में सहायक होए है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के भी सलाह होए है कि हमनी के हर रोज अपन खाना खान पान में मौसमी और स्थानीय फल के जरूर शामिल करे के चाहिए। आम, लीची, केला, अमरूद, पपीता, तरबूज, खरबूजा और मौसमी फल न केवल ताजा और स्वादिष्ट होए है बल्कि शरीर के जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करो है। बाल बच्चा के शारीरिक और मानसिक विकास से लेकर बुजुर्ग के बेहतर स्वास्थ्य तक हर आयु वर्ग के लगी ये फल अत्यंत लाभकारी हो है। फल हमनी के किसान के समृद्धि से भी जुड़ल है। आज देश में बागवानी और फल उत्पादन किसान के आय बढ़ावे में भी बहुत मदद करो है। फल खाना केवल स्वास्थ्य के ध्यान में रखना ही नए है श्रोता, बल्कि किसान के परिश्रम के सम्मान भी करना है। तो चले हमने अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस में एगो छोटा सा संकल्प ले वो ही है कि प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 प्रकार के मौसमी फल के सेवन करिए। आप देखा कि चेंगा चुटिया अपन हो ओकरा अच्छा आदत दिलाइए और जंक फूड के जगह पर पौष्टिक फल के बढ़ावा दिए। स्वस्थ शरीर और हो स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के नींव रहो है। यही लगी अपन खाना में और प्रतिदिन के खान पान में फल के नियमित स्थान देना है और स्वस्थ के साथ खुशहाल जीवन के आनंद भी लेना है। तो और देखा कि इस तरीके से हम लोग 1 जुलाई के अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के रूप में मनावे ही है, और साथ ही साथ देखा कि जुलाई के महीना में खरीफ फसल और बरसात के सब्जी लगावे के बहुत ही बढ़िया समय रहो है। इस समय मानसून के पानी के बीच धान के रोपाई, दलहन तिलहन के बुआई और सब्जी के रोपाई हुए है।

एकर में देखा कि खरीफ फसल में धान के रोपाई होवे, काहे कि धान के रोपाई में पानी के मात्रा बहुत ज्यादा रहो है। एकर साथे साथे मकई और बाजरा के फसल भी जुलाई के पहला सप्ताह में लगा लेवल जा है। 15 जुलाई के बाजरा के भी बुआई तू कर सका है। एक साथ तू देखा दलहन तिलहन जैसे सोयाबीन मूंगफली के बुआई भी जुलाई के पहले में कर लेवल जा है। मूंग उड़द अरहर के बुआई लगी जुलाई के महीना सबसे बढ़िया है। और ये राइजोम्बिलियम कल्चर से पहले बीज के उपचारित करके तबे मूंग अरहर और उड़द के बुआई करे के चाहिए। सब्जी में देखा कि तू लौकी करेला तोरई कद्दू और खीरा जैसन लत्तर वाला सब्जी के भी उपाय कर सका है। भिंडी फूलगोभी पत्तगोभी बैगन इस सब्जी के नर्सरी तैयार करके खेत में बुआई करना बहुत बढ़िया हो है। और फल बगीचा में भी देखा लीची अमरूद आम नींबू के नया बगीचा लगावे के लगी ई महीना बहुत बढ़िया रहे है। और देखा कि गोबर खाद नीम खल्ली और इस तरह के मिलाकर पौधा के रोपाई करे के चाही। तो देखा हम इन आगे और भी बात करबे ग्रामीण श्रोता। तो कहे ना कार्यक्रम के शुरुआत हो गए, तो सुने एक प्यारा सा गीत।

तो देखा अभी हमने सुन लिए इतने बेस गीत। उम्मीद कर रही है कि सभी ग्रामीण श्रोता के ये गीत बहुत बेस लगले हो। और देखा कि सभी किसान भाई बहन तो खेती बाड़ी करबे करो हथी और बहुत तरह के खेती बाड़ी कर रहे हथी, जैसे कि साग सब्जी लगाना हो गेलो, मुख्य फसल धान है, लत्तर वाला सब्जी है, बहुत तरह के साग सब्जी लगावो हथी। और एकरे साथे साथे देखा कि किसान भाई बहन सबके पशुपालन और फल बाग के खेती भी साथ में करो हथी, ताकि उनकर से का हो कि आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो जाए। एकरा लगी देखा कि डेयरी पशुपालन से आमदनी कमा सको हथी दूध बेचकर, और खाद लगी गाय के गोबर के प्रयोग करके और जैविक खाद बना के भी एकर लाभ उठा सको हथी। एकर साथे साथे बागवानी भी कर सके हथी, खेत के मेड़ में खाली जगह पर अमरूद नींबू पपीता और भी सब्जी लगा सको हथी। एकर साथ देखा कि मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन कम जगह और कम खर्च में कर सको हती, जेकरा से अंडा मांस और शहद बेचकर अपन आमदनी बढ़ा सको हती। एकर साथे साथे देखा कि फसल और चारा में तालमेल भी बनल रहे है, जेकरा से देखा कि मुख्य फसल के साथ चारा हो गेलो, जेकरा में बरसीम घास नेपियर घास के उगा के चारा के खर्च भी बचा सको हती, और जैविक खाद का प्रयोग गाय के गोबर से बनाकर कर सको हथी। और ऐसे ही किसान सब इतना जागरूक हो गेल थी कि देखा कि एक चीज पर निर्भर नहीं रहा थी, उन लोग साग सब्जी फल बाग सब काम

करो हथी। और एकरे में देखा कि एक बहुत ही सफल किसान हथी जो खे फल बाग के खे करबे करो हथी, साथे साथे देखा कि ला के बहुत ही उन्नत खेती करो हथी। तो कहे नहीं हम ये जानकारी बिना कुमेर करे ते सुनिए, और ये जानकारी हम इनके दे रही थी है अजीत बिन्हा, तो सुनल जाए ये जानकारी।

0: श्रोताओं, हम समय समय पे आपकी मुलाकात बहुत ही अनुभवी किसान से करवाते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आए हुए हैं जमुआरी ग्राम, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अनुभवी किसान हैं जो यहाँ बड़े पैमाने में लाह की खेती कर रहे हैं। जो आप अक्सर देखते हैं कि महिलाएं जो लाह की चूड़ी वगैरह पहनती है, इसका और भी बहुत सारा प्रयोग होता है, इसकी खेती ये कर रहे हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपका नाम क्या हुआ?
1: मैं अजीत बिन्हा हूँ।
0: कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं?
1: अभी मैं ये 2-2.5 साल से
0: जी
1: इस पर लगे हुए हैं।
0: लाख
1: के ऊपर में लाख का खेती कर रहे हैं।
0: और ये खेती करने से पहले आपकी पढ़ाई लिखाई बताइए, कहाँ तक आप किए हुए हैं?
1: मैं इंटरमीडिएट पास किया हूँ
0: जी,
1: और आगे का पढ़ाई तो अपना खेती बाड़ी पे ध्यान देते हुए मैं नहीं किया।
0: ये बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई करने के बाद आपका रुचि और रुझान खेती बाड़ी के तरफ
1: जी,
0: हुआ
1: जी।
0: सबसे पहले हमें बताइए कि ये लाह की खेती जो कर रहे हैं, इसकी तरफ रुझान आपको किस तरह से हुआ? कैसे आपको लगा कि हमको इसकी खेती करनी चाहिए?

0: डर टाइप से होता था
1: जी।
0: तो उस डर के चक्कर में मैं देखा कि सिंगल लता में खेती अच्छा हो रही है लाख की।
2: तो ये जो आप खेती कर रहे हैं लाख की, तो इसका जो शुरुआत में जो आप ये पौधा होता है कि बीज होता है इसका, वो क्या लगाते हैं आप? वो बीज रहता है या पौधा ही इसका लगाते हैं?
0: मैं अगला कृषक को देख करके वो पौधा का ही मांग किया। तो अगला कृषक बोले कि मेरे पास पौधा उपलब्ध है, तो मैं वहां से पौधा 1000 पौधा खरीद करके लाया।
2: तो ये 1000 पौधा कितने जमीन में लगाया?
0: ये आधा एकड़ में लगा हुआ है
2: जी।
0: और इसका कीमत भी मैं बताता हूँ कि 8 रुपया पीस करके दिया था
2: जी जी
0: पौधे का।
2: ओ, तो मतलब 8 रुपये पीस कर आप 1000 पौधा लगाए हैं
0: जी।
2: तो ये पौधा लगाए हैं तो ये पौधा आपको पूरा उपचारित वगैरह ही मिला होगा, ताकि उसमें से कोई पौधा अगर मरने की संभावना नहीं होती है ना?
0: जी, पूरा उपचारित पौधा मिला हुआ था और अभी 95% मेरा पौधा ठीक है, स्वस्थ है
2: जी बिल्कुल। तो ये जो पौधा है तो ये जमीन को तो इसके

0: अलग तरह से तैयारी करनी होती है कि और जो आप साग सब्जी पेड़ पौधा लगाते हैं वैसे तैयारी करनी पड़ती है?
1: ये साग सब्जी लगाते हैं वैसे ही तैयार किया जाता है, लेकिन
0: जी
1: इसका गड्ढा कोड़ना पड़ता है एक फीट करके।
0: ओ 1 फीट करके।
1: हाँ,
0: और कितनी दूरी में लगाते हैं?
1: एक एक मीटर की दूरी पर लगाते हैं इसको। जी
0: एक एक मीटर की दूरी में, वो मतलब बढ़ने का जगह उसको मिलना चाहिए, है
1: जी
0: ना? और ये जो कितने दिनों में ये पौधा मतलब उसमें ला आना शुरू हो जाता है?
1: लाख का पौधा लगाने के बाद 6 महीने,
0: छह
1: छह
0: महीने
1: महीने तक उसको पौधा को तैयार किया जाता है।
0: जी
1: उसको 6 महीने के बाद में उसमें लाख का कीड़ा छोड़ा जाता है।
0: जी तो ये 6 महीने में तो थोड़ा लंबा ही समय है
1: जी
0: ना? और ये जो कीड़ा है वो आप लोग उसमें डालते हैं,
1: जी
0: वो तो वो कीड़ा का इंतजाम कहाँ से करते हैं वो कीड़ा?
1: ये बाजार में ही मिल जाता है, जैसे कहीं पर सपोर्ट है के
0: हाँ
1: संस्था है वो काम कर रही है, चरही में,
0: हाँ
1: चरही से हम लोग मंगवा लेते हैं,
0: ओ,
1: वहाँ
0: वो
1: सपोर्ट
0: कीड़ा
1: संस्था
0: ले।
1: काम कर रही है, वहाँ से हम लोग को लाख का कीड़ा उपलब्ध हो जाती है।
0: जी और ये जो ला की जो खेती आप कर रहे हैं, ये पौधा किस समय लगाए हैं आप?
1: जून जुलाई के महीना में ही लगाया जाता
0: जी
1: है।
0: मतलब ये जून में लग चुका है?
1: जी अभी अच्छा टाइम है,
0: हाँ यही इसी समय लगता
1: इसी
0: है।
1: समय में।
0: ओ बिल्कुल अच्छी बात है। और ये मतलब कब तक, 6 महीना होता होगा कब तक मतलब ये हो जाता है?
1: मतलब जनवरी फरवरी में लगा सकते हैं, 15 फरवरी तक, उसके बाद फिर।
0: और ये लाह का कीड़ा कितने दिनों के बाद, 6 महीना के बाद?
1: हाँ मतलब 1 लाख का कीड़ा आप छोड़ेंगे तो वो 5 से 6 महीना में तैयार हो जाती है फिर।
0: ओ अब वो लाह का कीड़ा उस पेड़ में छोड़ने के बाद वो पेड़ में ला तैयार करती है,
1: जी
0: वो किस तरह से तैयार करती है?
1: वो ला एक कीड़ा होती है, वो अपना मल से ही लाख का गेठी बांधता है
0: जी
1: और गेठी तैयार हो जाता है, डंठल में पूरा भर जाती है,
0: हाँ,
1: उसको फिर कटिंग किया जाता है।
0: वो ला को
1: हाँ
0: डंठल के साथ?
1: हाँ डंठल के साथ में।
0: अच्छा
1: और सिमिया लता का पौधा ऐसा है कि नीचे कटिंग कर दीजिएगा तो फिर वहां से वो 3-4 डाल शाखा निकलती
0: निकलते
1: है।
0: चला
1: हाँ
0: जाता है,
1: 10 साल का ये
0: मतलब एक बार आप लगाइएगा तो वो 10 साल
1: दस
0: तक
1: साल तक
0: उसमें
1: चलेगा। हाँ लगा सकते हैं।
0: और वो कीड़ा भी हमेशा डालना पड़ता है कि उसी से?
1: ना हमेशा डालना पड़ता है, जैसे
0: मतलब
1: एक
0: वो
1: बार कटिंग हुआ।
0: पौधा 10 साल तक चलेगा?
1: हाँ 10 साल तक चलेगा
0: और कीड़ा आपको समय समय पे उसमें
1: डालना
0: डालना पड़ेगा?
1: जी,
0: ये तो बहुत
1: उसका
0: बड़ी
1: उसका
0: बात।
1: उचित समय है, 2 बार डाला जाता है कीड़ा,
0: अच्छी
1: ये 15 फरवरी मार्च
0: हाँ
1: फर्स्ट तक,
0: हाँ
1: उसके बाद में ये
0: जून जुलाई
1: 15 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में उस कीड़ा को छोड़ा जाता है।
0: जी तो एक पेड़ में वो गांठ जैसा बनते चला जाता है,
1: जी
0: मतलब कितने गांठ बनते हैं एक पौधे में?
1: मतलब वो एक पौधा में, जैसे 1 मीटर का पौधा हो गया
0: हाँ
1: तो आधे किलो तक का वो ला तैयार हो
0: हाँ
1: जाती
0: वो
1: है,
0: गांठ बन जाता
1: गांठ।
0: है,
1: हाँ आधे किलो तक।
0: मतलब एक कीड़ा आधा किलो का गांठ बना देता
1: जी
0: है। और एक पौधे में कितने कीड़े मतलब छोड़ते हैं एक?
1: नहीं उसका एक मतलब चयन किया गया है कि
0: अच्छा
1: कम से कम 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच जैसे करके वो
0: हाँ
1: डंठल को काट करके उसको ला गठे रहता है ना,
0: हाँ हाँ
1: उसी को उसको रस्सी के सहारे बांध दिया जाता
0: वो
1: है उसमें।
0: कीड़ा को?
1: जी
0: जी अच्छा
1: वो गठी को ही बांधा जाता है, उसी से
0: हाँ
1: कीड़ा निकलती है।
0: ओ उस गांठ में वो कीड़ा निकलना शुरू हो
1: हाँ
0: जाता है,
1: वहीं से पूरा फिर पौधा में अपना वो कीड़ा फैल जाता है और
0: हाँ
1: अपना मल से वो फिर नया गाँठ को तैयार
0: तैयार
1: करती है।
0: कर लेता है।
1: जी
0: तो एक पौधा में आधा केजी लाह तैयार हो जाता है,
1: जी
0: और ये लाह कब तक वो तैयार होने का पता चलता है कि वो लाह तैयार हो गया
1: चार
0: कैसे?
1: से 5 महीना में वो पूरा गाँठ तैयार हो जाती है,
0: हाँ
1: तो तैयार हो जाने के बाद में लाख देखिए कि वो पूरा लाल टाइप से हो जाएगा,
0: लाल जैसा हो
1: मोटा
0: जाएगा।
1: मोटा एकदम, तो उसको फिर कटिंग कर दिया जाता है, वो लाख को फिर पूरा दाल बना करके उसको वजन करके फिर बाजार में बेच दिया जाता है।
0: गांठ को काट के हटा देते हैं, फिर आप उसी में फिर दोबारा कीड़ा डाल के
1: जी
0: फिर उसी में फिर से ये कर देते
1: जी
0: हैं ना?
1: जी
0: तो ये तो बहुत बढ़िया बात है ये कि ला की खेती इस तरह से आप कर रहे हैं। तो इतने जो 1,000 पौधे में कितना ला तैयार हो जाता होगा?
1: 1,000 पौधे में लगभग आपका 4 से 5 क्विंटल
0: तैयार?
1: तैयार हो जाएगा।
0: बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बड़े
1: जी
0: पैमाने में हो जाता है
1: हाँ
0: ना? तो ये और ये जो ला तैयार होता है तो इसका क्या क्या उपयोग होता है ला का?
1: लाख का बहुत सारा उपयोग है,
0: हाँ
1: आप आज के जो महिलाएं लोग चूड़ी पहनती है उसका उसी लाख से निर्माण होता है, आपका सील मुहर लगती है,
0: हाँ
1: उसमें भी लगता है

0: मुहर में रहता है। हाँ।
1: और जितना भी हम लोग का ये फाइबर का सामान है उसमें लाख का मिश्रण रहता है। और अच्छा बात, एरोप्लेन जो हवा में उड़ रही है वो लाख और अब्रक का मिश्रण से ही उसका बॉडी को तैयार किया जाता है, इसलिए वो बहुत उस समय महंगी बिक्री होती है,
0: बहुत मतलब महंगा बिक्री होता है। महिलाएं इनका श्रृंगार का चीज इससे हो रहा है कि इसको हर पूजे में महिला लोग पहनती है, और इसके साथ साथ बता रहे कि इतने बड़े बड़े चीज में भी प्रयोग होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कितने मतलब दाम में ये बिक जाता होगा, जैसे पर केजी के हिसाब से चाहे क्विंटल में?
1: अभी तो बाजार में 900 से 1000 रुपये किलो करके बिक्री हो रही है
0: जी।
1: आप क्विंटल में जोड़ लीजिए तो बहुत मुनाफा होती है
0: जी, किसान बहुत अच्छी बात है। अच्छा अजीत जी, हमें ये बताइए कि जो ला जो हम लोग पहनते हैं, हम देख रहे हैं कि चूड़ी ला की जो चूड़ी है वो हर रंग में आती है, तो ये रंग मिलाया जाता है कि ला से ही वो रंग आता है?
1: ला से तो लाल रंग ही निकलती है, लेकिन और कुछ कलर बनाने के लिए वो कलर को मिश्रित करके ही नाना किस्म के कलर को बनाया जाता है।
0: और इसके अलावा और ला का जैसे एक मुहर में काम आ गया और चूड़ी में काम आ गया, फिर एरोप्लेन के का बॉडी में भी काम आ गया, और इसके अलावा भी और किसी चीज में काम आती है?
1: हाँ हाँ, जितना आपका फर्नीचर में कलर जो लग रही है
0: हाँ हाँ,
1: वो ला का ही रंग है।
0: अच्छा,
1: उसी का रंग को निकाल करके
0: रंग कैसे पिघला के ये हाँ हाँ, होता है
1: उसका चापड़ जो बनता है, उस चापड़ को 12 घंटा के लिए आप तारपीन तेल में छोड़ दीजिए
0: हाँ हाँ,
1: वो पूरा एकदम कलर भूल जाता है, उसके बाद लकड़ी में लगा दीजिए।
0: अच्छा, वही वो लकड़ी में चमक आ जाती
1: हाँ,
0: है ना?
1: चमक आ जाता है जी।
0: अच्छा अच्छा जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ला से इतना सारा चीजों का प्रयोग हो रहा है पौधा को बचाने के लिए। और जैसे कीड़ा तो आप डाल दिए ला के तैयारी के लिए, तो ये पौधे में और भी कोई कीट लगते हैं जिससे नुकसान हो सकता है ये ला का पौधा?
1: नहीं, ला का जब बीजा लगाते हैं लागा कीड़ा उसको समय के अनुसार ही मतलब कि पुराना ला को फिर उतार दिया जाता है, नहीं तो उसमें से एक शत्रु कीट निकलती है।
0: अच्छा, वो नुकसान
1: हाँ, वो शत्रु कीट फिर वो जो अपना मित्र कीट रहता है उसको वो खा जाती है, तो नुकसान करता है
0: जी। इसके लिए उसको समय पर हटा देना चाहिए,
1: समय पर हटा देना चाहिए।
0: और इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है?
1: गर्मी में उसको फुल सिंचाई दिया जाता है,
0: गर्मी के समय। जैसे अभी इतना भीषण गर्मी था
1: हाँ,
0: तो उसमें तो आपको पूरा पटाना पड़ा होगा,
1: पूरा सिंचाई करना पड़ा हमको।
0: तो पटाने के में तो आपको वो और भी निकालनी ये सब भी करना पड़ता होगा, घास
1: वही खेती बाड़ी है तो उसमें निकाई गुड़ाई भी जरूरत है, कोड़ाई बहुत जरूरी है,
0: और वो कोड़ समय समय पे कोड़ देते हो ताकि बढ़वार होगा
1: जी।
0: तो ये ला का पौधा कितना बड़ा होता है?
1: ये 2 मीटर तक बढ़ती है।
0: 2 मीटर तक? अच्छा, मतलब वो पेड़ जैसा नहीं होता?
1: नहीं, तो 2 मीटर तक बढ़ती है, उसके ऊपर फिर ला उसको तैयार किए आप
0: हाँ,
1: उसको तो कटिंग कर देना है।
0: अच्छा,
1: फिर नया से नीचे से फिर वो कंसिप्ट लिखती है।
0: तो ये ला उस मतलब पेड़ के ऊपर में होता है कि बीचों बीच से नहीं?
1: पूरा डाली में,
0: पूरे डाली में होता है,
1: पूरा डाली में
0: हाँ,
1: मोटा सा परत ला का जम जाता है
0: जी जी,
1: उसका मल से पूरा जम जाता है, उसी को काट करके फिर डाल करके बाजार में बेचा जाता है।
0: बहुत अच्छी बात है अजीत जी, आप इतनी अच्छी ला की खेती कर रहे हैं, और उम्मीद करते कि सभी किसान जो ग्रामीण होता है वो भी ये जानकारी सुनकर उन्हें भी लगे कि हम खेती बाड़ी में साग सब्जी फल बाग के साथ साथ हम ला की खेती भी करें। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी सुनकर सभी किसान लाभ उठाएंगे। और आप कुछ संदेश देना चाहते हैं किसान
1: जी?
0: हाँ, को
1: जी हाँ, देखिए हर तरह का खेती करना जरूरी है, ये नगदी फसल है, एक साल के अंतराल में आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी और इसमें कोई रिस्क नहीं है,
2: इसलिए मैं किसान। मैं तृप्ति कुमारी, राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत वॉलंटियर्स और शिक्षकों की तैनाती केवल BLO को सहयोग देने के लिए की गई है। उनका मुख्य उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने चुनाव आयोग से राज्य के करीब 47 लाख अनमैप्ड और ASTD सूची वाले मतदाताओं का विवरण तत्काल सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयोग इन सूचियों को अपनी वेबसाइट और प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रदर्शित करे। रामगढ़ पुलिस ने मांडू के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायक ने बताया कि ये वारदात 11 डिसमिल जमीन के आपसी विवाद को लेकर हुई थी।

0: चालकों को मौके पर ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किए गए। रामगढ़ के डीडीसी आशीष अग्रवाल ने आज प्रोजेक्ट इंपैक्ट एनईपी पखवाड़ा के तहत दो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गांधी मेमोरियल जिला स्कूल और बालिका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहुंचकर विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 6:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा।

कार्यक्रम युवानी सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को उनके दोस्त संजय का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आकाशवाणी के इस लोकप्रिय युवानी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह कार्यक्रम युवाओं के विचार, सपनों, चुनौतियों और संभावनाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करने का कार्य करता है। यहाँ हम शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता, तकनीक और व्यक्तित्व विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा करते हैं। तो आइए, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम प्रेरणादायक बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

हाँ दोस्तों, अगर जीवन में हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो इन तीन मूल मंत्रों को आप अपने जीवन में जरूर याद रखें। और वो तीन मूल मंत्र हैं अनुशासन, मेहनत और धैर्य। जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए इन तीनों का होना अनिवार्य है। दोस्तों, अनुशासन हमारे जीवन को एक सही दिशा और रूप देता है। यह अनुशासन हमें समय का प्रबंधन, निरंतरता और बुरी आदतों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। दोस्तों, हमारा दूसरा जो पहलू है लक्ष्य प्राप्त करने का है, वो है हमारी कड़ी मेहनत। मेहनत वह ईंधन है जो सफलता की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, इस मेहनत के ईंधन के रूप में हम मेहनत के ईंधन की जो गाड़ी है सफलता प्राप्त करने के लिए, उसमें हमें आत्मविश्वास का निर्माण करना चाहिए, अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहिए और अनेक विकल्पों को हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए और उस पर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और दोस्तों, जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए धैर्य सबसे बड़ी सीढ़ी है। धैर्य वह ढाल है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती है। इसके लिए हमें हमेशा कोई भी सफलता को प्राप्त करने के लिए धैर्य बनाए रखना होगा। हमें एक लंबे विजन के साथ काम करना होगा और दोस्तों, हमेशा अपने असफलताओं से सीखना होगा, क्योंकि ये असफलताएं ही हमें जीवन में नया पाठ पढ़ाती हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, यदि हम इन तीनों मूल मंत्रों को अपने जीवन में समाहित कर लें, तो अवश्य ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग, यह भी एक बहुत बड़ी

0: कारक के रूप में जानी जाती है। समय जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन के रूप में जाना जाता है। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए उसका सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। और समय तालिका हमें अपने दिन की स्पष्ट योजना बनाने में मदद करती, जिससे हर कार्य के लिए पर्याप्त समय निर्धारित हो जाता है और हम अनावश्यक दौड़ भाग से भी बच जाते हैं। दोस्तों, अगर हमें जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें अपने जीवन में समय तालिका को विशेष महत्व देना चाहिए। समय तालिका का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह अनुशासन और नियमितता की आदत विकसित करती है, जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। जब हम निश्चित समय पर पढ़ाई, काम, व्यायाम, विश्राम या अन्य आवश्यक कार्य करते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है। खासकर विद्यार्थियों के लिए समय तालिका विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि ये परीक्षा की बेहतर तैयारी, विषयों के संतुलित अध्ययन और समय पर पुनरावृत्ति में सहायक करती है। दोस्तों, समय तालिका के लिए सफलता के लिए समय तालिका का क्या महत्व है, आइए आज के इस कार्यक्रम में हम जानते हैं।
1: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वरीय शिक्षिका श्रीमती विम्मी प्रियदर्शनी जी से, जो अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग में कार्यरत हैं। विम्मी जी हमें आज जानकारी देंगी एक आदर्श विद्यार्थी के जीवन में समय का क्या महत्व है इस विषय पे। तो सबसे पहले विम्मी जी, आपका इस कार्यक्रम में हम करते हैं बहुत बहुत स्वागत और कहते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार
1: विम्मी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सफलता के लिए कर्म के साथ ही समय प्रबंधन भी बेहद जरूरी है, इस बारे में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: जी हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी के जीवन में समय प्रबंधन बहुत महत्व रखता है। अगर विद्यार्थी अपने जीवन में समय का प्रबंधन नहीं करते हैं, तो वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं जी। और समय का प्रबंधन के लिए उन्हें सुबह सोकर उठने से लेकर के रात के सोने समय तक के लिए एक समय तालिका बना लेनी चाहिए। कितने बजे तक में वह कितना काम कर सकते हैं, इस तरह से अगर वह अपना तालिका बनाए और उसमें वह अपने लिए पढ़ाई के लिए कितने समय होने चाहिए, सफाई स्वच्छता के लिए कितने समय देने चाहिए तथा अपने रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए और समाज की सेवा के लिए कितने समय देने चाहिए, इस तरह से वह सारे समय का प्रबंधन करें, सारे समय को बांट दें और समय का प्रबंधन करें, तो वो एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं
1: जी। विम्मी जी, उचित समय पर यदि कोई विद्यार्थी अपना कार्य करते हैं तो हमेशा फलदायी होता है, इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे छात्राओं?
2: जी हाँ, ये भी कहना बिल्कुल सही है कि उचित समय पर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या होगा
1: जी जी।
2: तो इसलिए समय रहते ही हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हर एक समय, हर एक पल बीतता जा रहा है जिसका हमें बोध नहीं होता है, हमें इसका ज्ञान नहीं होता है कि हम हर एक क्षण, एक पल, एक समय खो रहे हैं। और हमें चाहिए कि हर एक समय को हम सदुपयोग करें। सदुपयोग समझना बहुत जरूरी है कि सदुपयोग, समय का सदुपयोग क्या होता है।
1: बहुत जरूरी है।
2: समय का सदुपयोग में सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किताब की ज्ञान तो जरूरी है, वह तो किताब की ज्ञान से तो सिर्फ उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं
1: जी।
2: किताब के ज्ञान के साथ साथ हम उन्हें अपने व्यवहारिकता में कैसे ला सकते हैं, हम उन चीजों को, जो चीज हम किताबों से सीखते हैं, उनको हम व्यवहारिकता में कैसे अपने जीवन में उपयोग करें, अगर हम इस तरीके से सीखेंगे तब हम एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं
1: जी। जो व्यक्ति उचित समय पर अपना कार्य नहीं करते हैं विमी जी, उनकी सफलता संदिग्ध ही रहती है, इस बारे में आप क्या कहेंगी?
2: हाँ, ये सही है कहना कि उचित समय पर तैयारी नहीं करने पर सफलता संदिग्ध रहती है। उचित समय कौन सा समय है जिसे हम उचित समय कहेंगे?
1: जी, ये जानना बहुत जरूरी है।
2: ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा समय है जो उचित समय है। कोई कहता है शाम का समय हमारे लिए उचित समय है, कोई कहता है हमारे लिए रात का समय उचित समय है। नहीं, हमारे लिए उचित समय जो अभी वर्तमान का समय है वही हमारे लिए उचित समय है, और इस वर्तमान समय को ही हमें अपने काम में लगाना चाहिए। हमें अपनी अध्ययन के लिए और अध्ययन से प्राप्त किए हुए ज्ञान को व्यावहारिकता में लाने के लिए हमें लगाना चाहिए, तभी हम एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, अन्यथा हमारी सफलता भी संदिग्ध ही रहेगी।
1: जी, सफलता के लिए लक्ष्य तय करना भी जरूरी है ताकि हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच जाएं। इस संबंध में भी आप थोड़ी जानकारी दे दें विद्यार्थियों को।
2: सफलता के लिए सही समय पर हमें अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, चारों ओर हजारों तरह के अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें अपने लिए अवसर वही ढूंढना है जो अवसर हमारे लिए उचित है, और हमें उचित अवसर का उपयोग करना चाहिए, तभी हम सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। लक्ष्य का तय नहीं करने से हम मार्ग से भटक सकते हैं, हमें कभी ये मार्ग कभी वो मार्ग अलग अलग रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन हमें एक ही मार्ग पर चलना चाहिए जो हमारा लक्ष्य हो। उसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पीमी जी, आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, तो एक विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस बारे में आपको सलाह दें?
2: विद्यार्थी हमारे आज के दौर में, सही बात है कि आज के दौर में वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कई तरह की चीजें परोसी जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कई तरह की चीजें परोसी जा रही हैं, और वो जो चीजें उन्हें परोसी जा रही हैं जो उन्हें बहुत लालायित कर देती हैं, और वह अबोध बालक होते हैं जिन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह गलत रास्ते की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान कम हो जाता है। उन्हें लगता है शिक्षा तो सभी ले रहे हैं, लेकिन मनोरंजन करने का यही एक समय है, और वह अपने माता पिता से छिप करके, अपने शिक्षक गणों से छिप करके, वह अपने मनोरंजन के लिए ज्यादा समय देते हैं, या फिर अपने किसी हॉबी के लिए ज्यादा समय दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हें चाहिए शिक्षा पहले है, सबसे जरूरी है कि हम आधार किसे बनाएं। आधार अगर हमारा ना होगा तो हम उसके ऊपर महल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आधार हमें सबसे पहले बनाना है। आधार बनाने का मतलब है सबसे पहले हमें शिक्षा लेनी होगी। शिक्षा अगर हमने ले लिया तो फिर हम आगे उसके ऊपर कई तरह की इमारत खड़े कर सकते हैं।
1: जी,
2: इसलिए ये जरूरी है कि पहले शिक्षा लें, उसके बाद ही किसी दूसरे लक्ष्य की ओर अपना ध्यान भटकाएं।
1: जी, मिमी जी, कुछ और सवाल है जिससे मैं पूछना चाहूंगी। शिक्षा के संदर्भ में समय का क्या महत्व है, इस बारे में आप कुछ जानकारी दें?
2: शिक्षा के संबंध में समय का बहुत महत्व है। अगर यूं कहें तो हर एक मामले में समय का महत्व होता है, लेकिन शिक्षा के मामले में समय का बहुत महत्व होता है, इसलिए क्योंकि शिक्षा का जो समय है वह सीमित समय है।
1: जी, बिल्कुल।
2: एक सीमित समय तक ही हम शिक्षा लेते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन निर्वाह के कार्य में लग जाते हैं और अलग अलग कार्यों में हमारा ध्यान चला जाता है, हम दूसरे कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं। और आज के दौर में शिक्षा

0: सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर शिक्षा के हम किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आज लोग अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे अंक के साथ अपने प्रगति को दिखा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इसके साथ समय को सही प्रबंधन करें, समय का सही प्रबंधन करें और समय के साथ वो अपना तैयारी करें,
1: बिठा कर चले, है ना,
0: तालमेल बिठा करके चले, उसमें तभी वह सफल विद्यार्थी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षा के संदर्भ में समय का बहुत महत्व है, इस बात को विद्यार्थियों को समझना होगा, है ना, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को इस संदर्भ में क्या आत्म मंथन की आवश्यकता है?
0: हाँ, यह बिल्कुल जरूरी है। आज के दौर में हर एक विद्यार्थी को आत्म मंथन की आवश्यकता है। इसलिए आत्म मंथन की आवश्यकता है क्योंकि हर एक विद्यार्थी की योग्यता अलग अलग होती है।
1: जी।
0: तो ये नहीं समझना चाहिए कि कोई विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में किसी विषय पर आगे चल रहा है तो मैं भी उसी विषय पर आगे चलूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्म मंथन करके देखें कि हमारे लिए हमारी योग्यता किसमें सबसे अधिक है, और हमारी योग्यता जिसमें सबसे अधिक है हमें उसमें ही ज़्यादा काम करना चाहिए और अपनी योग्यता को दिनों दिन बढ़ाना चाहिए। आत्म मंथन की ज़रूरत इसलिए भी है
1: जी।
0: कि विद्यार्थी शिक्षा का महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें कई बार शिक्षा बोझ के समान लगती है या आदेश के समान लगती है, उन्हें लगता है कि शिक्षा सिर्फ माता पिता का आदेश है जिस कारण से शिक्षा लेनी पड़ती है, या शिक्षकों का बहुत दबाव बना रहता है इसलिए।
2: तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि सफलता के लिए समय तालिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष आज पूरे हुए हैं। 1 जुलाई 2026 को यह दिन आज पूरा हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को इस ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप में सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना था। दोस्तों, इन 11 वर्षों में देश में सुशासन, बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। अगर हम 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया की मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो भारत आज दुनिया में रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 देश बन चुका है। भारत अकेले दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का लगभग 49% हिस्सा संभालता है। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 24,000 करोड़ पार कर गई। दूसरी बात, जनधन खाता, आधार और मोबाइल की तिगड़ी ने देश से भ्रष्टाचार को मिटाने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पैसा अब बिना किसी कटौती के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। तीसरी बात है कि आज सस्ता डेटा और इंटरनेट हर सभी को उपलब्ध है। देश में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 103 करोड़ के पार हो चुकी है। भारत में आज 1 GB मोबाइल डेटा की कीमत महज 8 से 10 रुपया है, जो दुनिया में सबसे सस्ती दरों में से एक है। दोस्तों, कागजी दस्तावेजों से मुक्ति दिलाने वाले डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के यूजर्स की संख्या आज 70 करोड़ से अधिक हो गई है, जिससे सरकारी और निजी सेवाएं पूरी तरह से पेपरलेस होती चली जा रही हैं। और अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ई संजीवनी जैसी पहलों के माध्यम से लोग आज घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श ले रहे हैं और अस्पतालों में लाइन लगाने की जरूरत खत्म हो गई है। दोस्तों, 11 साल पूरे होने पर भारत सरकार अब तकनीक के अगले चरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और सेमीकंडक्टर

मैन्युफैक्चरिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूत आधारशिला बनेंगे। तो दोस्तों, आज डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर हमने जाना कि क्या रही 11 वर्षों की मुख्य उपलब्धियां। दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम युवानी से विदा लेने का, तो आइए चलते चलते सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाए इसी खूबसूरत से गीत के साथ कार्यक्रम युवानी से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा साथियों को संबोधित करता कार्यक्रम युवाणी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म बादल से।

दोस्तों, भी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक, शान के और साथियों के आवाज में फिल्म तेरे नाम से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.1 MHz पर, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार और फिर जिले में आजकल।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट का पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला। नियमित नियुक्ति से पहले की संविदा सेवा को भी माना जाएगा पेंशन योग्य। ब्याज सहित भुगतान का निर्देश। राज्य में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, BNO ऐप का संचालन किसी भी हाल में नहीं करेंगे वॉलेंटियर्स। राज्य में कृषि संकल्प अभियान के तहत उन्नत और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों से रवाना हुए डिजिटल रथ। पंचायतों में होगी किसान संगोष्ठी। जमशेदपुर में करणी सेना नेता की हत्या के खिलाफ भाजपा का 3 जुलाई को बंद का आह्वान। कांग्रेस ने आरोपियों को बताया बेबुनियाद। और राज्य के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और पलामू में अगले कुछ घंटों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि नियमित नियुक्ति से पहले संविदा के आधार पर दी गई सेवा अवधि को भी

0: अभियान तेजी से जारी है। इसी कड़ी में रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज ने बड़का गांव और रामगढ़ में प्रपत्र वितरण की समीक्षा करते हुए लापरवाह सुपरवाइजरों को कड़ी फटकार लगाई। उधर लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आज समाहरणालय से निर्वाचन जागरूकता रथ रवाना किया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर प्रपत्र संग्रह कर रहे हैं। प्रपत्र जमा करने वालों के नाम ही 5 अगस्त को प्रारूप सूची में शामिल होंगे।
1: हर एक मतदाता का तो एनुमरेशन फॉर्म है, यानी कि गणना प्रपत्र जनरेट हुआ है। हर एक बूथ के जो बीएलओ उनको हम लोगों ने वो गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया है और 20 जून से लेकर के 29 जुलाई तक जो हाउस टू हाउस विजिट चलेगा उसमें जितने भी मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम है, हमारा बीएलओ जो है 324 जो बूथ में है उसका हर बीएलओ हर मतदाता के घर घर जाएगा।
0: इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण में शिक्षकों और वॉलंटियर्स की तैनाती केवल बीएलओ के सहयोग के लिए की गई है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वॉलंटियर्स की जिम्मेदारियां स्पष्ट रखी जाए और वे किसी भी परिस्थिति में बीएलओ ऐप का संचालन नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज साहिबगंज, पाकुड़ और पलामू सहित विभिन्न जिलों से डिजिटल बिरसा कृषि जागरूकता रथ रवाना किए गए। ये रथ अगले 15 दिनों तक सभी ग्राम पंचायतों का सघन भ्रमण करेगा। अभियान के दौरान किसान संगोष्ठियों के माध्यम से खरीफ की उन्नत खेती, जैविक कृषि और सुखाड़ में वैकल्पिक खेती की जानकारी दी जाएगी। जमशेदपुर हत्याकांड के विरोध में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज रांची में घोषणा की कि 2 जुलाई को जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद रहेगा। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराने और पीड़ित परिवार को मुआवजा व सुरक्षा देने की मांग की है।
2: पुलिस का काम है कि जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करना, चाहे कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो, दोषी होगी तो कार्रवाई हम लोग करेंगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। भारतीय जनता पार्टी पक्षपात की राजनीति नहीं करती है, हमेशा न्याय के रास्ते पर रखती है। जहां अन्याय होगा कोई भी अन्याय करेगा तो भाजपा एक पर भी पीछे हटने का काम कार्रवाई से नहीं करेगा।
0: प्रदेश कांग्रेस ने जमशेदपुर घटना को लेकर भाजपा के बंद को आह्वान के राजनीतिक अवसरवाद करार दिया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और सरकार पर लगाए गए आरोप निराधार है। सरकार इस मामले में सख्त है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सहैंडल @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश में वस्तु और सेवा कर यानी GST लागू होने के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस ऐतिहासिक कर व्यवस्था ने कर संरचना को तर्कसंगत और मानकीकृत बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को मजबूत किया है। इसके तहत 17 विभिन्न करों और 13 उपकरों को एकीकृत किया गया था। नए GST सुधारों ने कम दरों और आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से कर प्रणाली को और सरल बना दिया है, जिससे परिवारों, लघु उद्योगों और किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने नेतृत्व में हुई इस बैठक में राज्य में उद्योग, व्यापार और निवेश पर सकारात्मक चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में पीएम सड़क योजना, पीएम आवास और कुसुम योजना के तहत हुए विकास कार्यों की प्रगति साझा की। साथ ही उन्होंने बरकाकाना रेलवे स्टेशन के कायाकल्प और कोडरमा रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य की भी जानकारी दी।

0: पुस्तक में लिखा है दो साल बेमिसाल और वो मिसाल रहना ही है, इसलिए कि हम लोगों ने जनता के हित के लिए बहुत सारे कामों को किया जो मेरी बेसिक जिम्मेवारी थी, जो एज ए सांसद केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उस योजना के बारे में हमने अपनी पूरी बात रखी है। इसका डिजिटल वर्जन आपको वहाँ पर उपलब्ध है, इस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने रखा है, आशा है कि लोग इसको जज करेंगे।
1: रांची पुलिस ने आम जनता की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए सभी थानों में साप्ताहिक जन शिकायत समाधान शिविर की शुरुआत की है। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर यह कार्यक्रम अब प्रत्येक बुधवार को आयोजित किया जाएगा। शिविर में डीएसपी स्तर के अधिकारी और थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहकर जमीन विवाद, धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और चोरी जैसे मामलों की सुनवाई कर मौके पर ही समाधान का प्रयास किया जाएगा। रामगढ़ पुलिस ने मांडू के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि ये वारदात 11 डिसमिल जमीन के आपसी विवाद को लेकर हुई थी।
2: घटना का संज्ञान लेते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जो घायल व्यक्ति था उसको अस्पताल भिजवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को बुलाते हुए उस घटनास्थल से पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ, वैज्ञानिक तरीके से साक्षी सम्मेलन किया गया और अभी तक की पूछताछ में जमीन के विवाद में हत्या करने की बात सामने आई है।
1: मौसम विभाग ने चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और पलामू जिलों के लिए अगले एक से तीन घंटों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट का पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला। नियमित नियुक्ति से पहले की संविदा सेवा को भी माना जाएगा पेंशन योग्य। ब्याज सहित भुगतान का निर्देश। राज्य में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा बीएलओ ऐप का संचालन किसी भी हाल में नहीं करेंगे वॉलंटियर्स। राज्य में कृषि संकल्प अभियान के तहत उन्नत और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों से रवाना हुए डिजिटल रथ। पंचायतों में होगी किसान संगोष्ठी। जमशेदपुर में करणी सेना नेता की हत्या के खिलाफ भाजपा का 3 जुलाई को बंद का आह्वान। कांग्रेस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। और राज्य के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और पलामू में अगले कुछ घंटों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: रांची के कांकेर स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि झारखंड के किसानों के आकांक्षाओं और आशाओं का केंद्र है। उन्होंने कहा कि कृषि अब सिर्फ परंपरागत खेती तक सीमित नहीं है बल्कि नवाचार, स्टार्टअप, खाद्य प्रसंस्करण एवं रोजगार सृजन का एक व्यापक क्षेत्र बन चुका है। राज्यपाल ने कहा कि किसान समृद्ध होंगे तभी गांव और देश समृद्ध होगा।
2: हमारे जनजातीय समाज ने सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए टिकाऊ कृषि और संसाधनों के संरक्षण की एक समृद्ध परंपरा विकसित की है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय जैविक खेती, श्री अन्न मिलेट्स, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान कर रहा है।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रांची में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए 15 प्रचार प्रसार वाहनों को जागरूकता के तहत चलाया गया। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत सदर अस्पताल से की गई। इस अवसर पर रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है लेकिन इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सहिया और संबंधित टीम अभियान को सफल बनाने में एकजुट दिख रही हैं।
3: सदर अस्पताल में पोलियो दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई ताकि एक भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए। दो बूंद पोलियो का जीवन की रक्षा करने का काम करता है और बूथों पर यहाँ के कर्मचारी पोलियो की खुराक देने का काम करता है। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि अपने जो नवजात बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाए।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में रांची स्थित योगदा आश्रम में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर आश्रम के स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने लोगों को ध्यान और योग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है।
4: योगदा की जो शिक्षाएं हैं उसमें मानव की जो तीन पहलू हैं, मानव का एक शरीर है, मानव का एक मन है, मानव की एक आत्मा है, इन तीनों पहलुओं का एक सामंजस्यपूर्ण विकास करने की विधि हम लोग सिखाते हैं। ध्यान की विधियां हैं, उच्च कोटि के प्राणायाम हैं जिससे हम मन को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं और व्यक्ति जो है अपनी चेतना को ईश्वर के साथ जोड़ सकता है।
1: रांची के आर्यभट्ट सभागार में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग यंग प्रोफेशनल राउंड टेबल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विषय पर केंद्रित था। इस मौके पर माई भारत झारखंड की स्टेट डायरेक्टर ललिता कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है, उसमें युवाओं की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं को आइडिया शेयर करने का मौका देता है।
5: मोदी जी का विजन है कि 2047 में हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में विकसित देशों के कतार में आ जाए। तो हमारे जो यूथ प्रोफेशनल्स हैं, यंग यूथ है 15 से 29 वर्ष के लोगों को, उनका आइडिया भी लिया जा रहा है ताकि उनका आइडिया को इंक्लूड किया जाए।
1: राउंड टेबल में अन्य युवाओं के साथ झारखंड की पीएम प्रेजेंटर आयशा फातिमा ने भी अपने विचार रखे। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम जानकार।

कार्यक्रम संगीत के कार्यक्रम जानकार सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को उनके दोस्त संजय का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म धमाल 4 से।

दोस्तों, भी आपने सुना ममता शर्मा और नीलकमल सिंह की आवाज में फिल्म धमाल 4 से लिया गया ये गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, वेलकम टू द जंगल से।

जवानी तो इश्क़ होना है, इस फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म पति पत्नी और वो दोनों से।

दोस्तों क्रू रंधावा और हीर की आवाज में भी आपने सुना फिल्म पति पत्नी और वो तो मुझसे लिया गया ये गीत। अब हम सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम नगमा जिसे लिया है हमने फिल्म स्त्री 2 से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम झनकार FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

कार्यक्रम ऑल टाइम्स हिट्स सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को उनके दोस्त संजय का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक अभिजीत की आवाज में, जिसे मिली है फिल्म चलते चलते से।

दोस्तों भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम।

0: दोस्तों भी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह के अंतर्गत महिला उत्पीड़न के दुरुपयोग से संबंधित प्रावधानों को और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं हजारीबाग बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजकुमार राजू जी और इनसे बातचीत करें हमारे ओर से मासूम अहमद।
1: श्रोताओ, महिला उत्पीड़न से बचाव को लेकर हमारे देश में विविध कानूनी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन श्रोताओ कई बार इन कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग के मामले भी सामने आते हैं। कई बार झूठे केस दर्ज करवाने के मामले में समझौता को लेकर दबाव बनाने और मोटी रकम की मांग करने, लिव इन और ब्रेकअप मामले और कभी कभी पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल के मामले भी सामने आते हैं। इन कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग से बचाव को लेकर न्यायालय

0: निर्दोष को बचाओ और दोषी को सजा दो के सिद्धांत पर बल देता है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज सबसे पहले हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष श्री राजकुमार राजू। राजकुमार जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर महिला उत्पीड़न के कौन कौन से मामले अधिकांशतः न्यायालय के समक्ष आते हैं?
1: देखिए, महिला उत्पीड़न के बहुत सारे मामले हैं। अगर आप देखिएगा तो वो छेड़खानी, जिसको हम लोग कहते हैं, समझे, यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट वीमेन विथ इंटेंशन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, ये पहले 354 था, डीएनएस में चेंज हो गया। तो उसमें भी ए बी सी डी करके 3-4 क्राइटेरिया हैं। महिला का पीछा करना, अभद्र व्यंग कसना, उसके शरीर को गलत मंशा के साथ छूना। दूसरा मामला सबसे अधिक न्यायालय में देखने को मिलता है, जो दहेज उत्पीड़न को लेकर के, जैसे पहले 498 आईपीसी में केस इंस्टीट्यूट होता था, अब जो है 185 बीएनएस हो गया। तीसरा जो सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो बलात्कार के मामले हैं। चौथा जो है सो पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 4, 8, 12 के मामले नज़र आते हैं। धारा 6 के भी मामले नज़र आते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मामले नज़र आते हैं। उसके बाद कार्यस्थलों पर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस, जिसमें कि नौकरी से भी निकालने तक का प्रावधान होता है। तो ये सारे मामले न्यायालय में अधिकांश देखने को मिलते हैं। इन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून बनाया गया महिलाओं को सशक्त करने के लिए, लेकिन अफसोस ये है कि महिलाएं सशक्त होने के अतिरिक्त कुछ लोग जो हैं इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और दुरुपयोग करने के पीछे अलग अलग धाराओं में अलग अलग मंशा नज़र आता है। जैसे ये छेड़खानी के मामले जो 354 आईपीसी में पहले था, वो जमानती अपराध था, तो वो अपराध जब तक जमानतीय था तो उसके मामले काफ़ी कम नज़र आते थे, लेकिन 2013 अमेंडमेंट में इसको गैर जमानतीय बना दिया गया। जैसे ये गैर जमानतीय हुआ तो लोग देखते हैं कि एक सेक्शन जोड़ देते हैं कि हमारे साथ मारपीट किया, पहले आरोप लगाते थे मारपीट किया, पॉकेट से पैसा निकाल लिया, सोना का चेन निकाल लिया, एक झूठा आरोप लगाते थे, आजकल बोलते हैं मारपीट किया, महिला का दुपट्टा खींच लिया, उसके साथ कुछ गलत बर्ताव कर दिया। तो ये केस को गंभीर बनाने के लिए,
0: चूंकि ये गैर जमानती हो जाता है,
1: गैर जमानती होने के बाद ये ज्यादा नजर आया है।
0: तो राजकुमार जी, जो ये कानूनी प्रावधान है महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो उसे बचाओ।
1: मैं कह रहा था कि अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग रहता है। जैसे मारपीट मामूली हो और आदमी को लगता है कि मारपीट तो जमानती है, तो आदमी अंदर जाएगा नहीं, तो गैर जमानतीय बनाने के लिए 354 लगा देते हैं, छिड़काने की बात डाल देते हैं। बलात्कार के मामलों में देखा जाता है कि भया दोहन करने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए, और दूसरा नजर आता है कि दबाव बनाने के लिए, मुकदमे का भय दिखा करके एक तरह से उसको कहते हैं रंगदारी वसूलना, वो भी एक हो गया है। पॉक्सो और बलात्कार के मामले भी नजर आता है। दहेज हत्या के मामले में देखिएगा कि बेटी मर गई ससुराल में, और उसके बाद परिवार के लोग कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं एक मोटी रकम ऐड करके। ससुराल में अगर एक्सीडेंट से भी किसी का डेथ हो जा रहा है तो वहाँ भी एक दूसरा कहानी चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप वाले ज़्यादा बलात्कार और ये सब की कहानी बनाते हैं। अब तो एक और नया आ गया है 69 बीएनएस, उसमें है कि शादी का झूठा जासा दे करके हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, भले मेरी सहमति थी। तो बहुत सारे चीज है जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाया गया, ऐसे अपराध हो रहे थे परंतु इनका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय और लेजिस्लेचर दोनों ओर से काम हुए हैं। अब क्या क्या काम हुआ है, दुरुपयोग कैसे कैसे रुकता है, सो बता रहा हूँ। जैसे 498 के मामले में पहले देखते थे कि शादीशुदा ननद भी जेल चली जाती थी, 7 बरस से कम जिन अपराधों में दंड था, उन अपराधों में पुलिस बिना कोई गिरफ्तारी वारंट का गिरफ्तार करती थी, लोगों को जेल भेज दिया करती थी। अब क्या हो गया है कि सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, एक

0: निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया उसमें सीधे दिया कि जिसमें 7 साल से कम दंड हो पुलिस उसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अभियुक्त को, अभियुक्त आता है स्वेच्छा से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, आत्मसमर्पण करता है तो न्यायालय उसको जमानत दे देगी। अब पुलिस का पावर छीना सेक्शन 41 है CRPC से, जो अभी 33.5 BNSS जो हो गया उसमें क्या है कि जिसमें 7 साल से कम सजा हो तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जिसको आरोपी बनाया जाएगा पुलिस उसको नोटिस करेगी और उसका पक्ष जानेगी, उससे शपथ पत्र लेगी कि वो न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। चौथा चीज है कि क्रॉसिंग ऑफ FIR 482 CRPC में लोग मुकदमे को खारिज करवाने के लिए जाते हैं, डिस्चार्ज का पिटीशन है, और अगर आपके साथ कोई भया दोहन कर रहा है तो उसके भी उपाय हैं पहले, लेकिन आपको मुकदमा में बरी होना होगा। आप जांच में पुलिस के पास आवेदन दीजिए, निष्पक्ष जांच की मांग कीजिए और सारे सबूत इकट्ठा कीजिए। बोल रहे हैं ना कि हम जांच के लिए बोले और पुलिस जांच नहीं करती है, तो आपको ये सब आगे चल करके काफ़ी काम देगा। तो आप बाद में जब पुलिस मान लीजिए एक पक्षीय अनुसंधान करके आरोप पत्र दे दी, चाहे न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, तो ऐसी स्थिति में ये मामला क्वाश भी हो सकता है। पहले लोग कोर्ट कॉम्प्लेंट से भी केस करते थे और अपने पसंद के 2-3 लोग का गवाही करवाए और संज्ञान करवा देते थे, तो अभी BNSS में ये चेंज हो गया, उसमें धारा 223 सब क्लॉज 4 उसमें एक प्रोविजन आ गया कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के पहले जिनको आरोपी बनाया है उनका भी पक्ष जानने का अवसर देना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है, इसका पालन अनुपालन होना जरूरी है। अगर इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो केस ऐसे ही खारिज हो जाएगा। तो इससे आरोपी लोग भी अपना जवाब दे देते हैं और न्यायालय के सामने सच्चाई आ जा रहा है।
1: तो राजकुमार जी, ये जो कानूनी प्रावधान है महिला संरक्षण को लेकर उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे माननीय न्यायालय का ये कि ये सोच होती है कि दोषी छूटे नहीं और निर्दोष को सजा ना हो,
0: हम लोग वो सब नहीं देखते हैं। मेरी इतने दिन की वकालत हो गई, काफ़ी गंभीर मामलों को हम लोगों ने हैंडल किया, हम तो नहीं देखे हैं कि सजा हो जाता है। आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष किस तरह से ला रहे हैं, ठीक है। कई मामले ऐसे हैं बलात्कार के मामले जिसमें हम लोगों ने अभियुक्त के जिसमें जमानत तक नहीं मिला, 3-3 साल जेल में रहा है और मुकदमे से बरी होने के बाद हम लोगों ने मानहानि का केस किया है, झूठा मुकदमा करने का केस किया है, ये भी प्रावधान है। कोई पब्लिक इस चीज़ को हल्के में नहीं ले, 2-3 प्रोविजन है। झूठा FIR कराने पर 188 है, झूठा अब बयान दे रहे हैं तो 195 211 सब है, ये सब में दंड है, 499 500 है कि आप कि झूठा मुकदमा करने कारण मेरा मान मर्दन हुआ। 389 IPC बड़ा क्लियर है कि मुकदमे का भय दिखा करके अगर आप किसी से रंगदारी मांग रहे हो तो वो भी अपने आप में एक अपराध है, वो भी उसमें भी काफ़ी सजा है। तो लोग कानून का सही ढंग से इस्तेमाल करें और उसके बाद सिविल में भी रिमेडी है कि अगर आपको कोई झूठा केस किया और आप बरी हो गए, चाहे मुकदमा झूठा पाया गया, आपका मान मर्दन हुआ, तो आप अपने गुडविल के अनुसार हर्जाना मांग सकते हैं। हजारीबाग के कई मानिंद लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, पैसे की मजबूरी है, कई ऐसे मानिंद लोग हैं जिन पे झूठे मुकदमे लोगों ने लाया और वो मुकदमे हम लोग जीतने के बाद करोड़ों करोड़ रुपये का मानहानि का दावा न्यायालय में किया है, जो कि मामले अभी चल रहे हैं और कुछ लोगों को दिलवाया भी है।
1: तो राजकुमार जी, आपने महिला संरक्षण के जो प्रावधान है उनके दुरुपयोग और उसे बचाव को लेकर काफ़ी अच्छी जानकारी दी, आपने आकाशवाणी के लिए अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अब हम बातचीत कर रहे हैं अधिवक्ता कृति जया से। कृति जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर जो विविध प्रावधान हैं उसके दुरुपयोग की भी खबरें अक्सर देखने सुनने को मिल जाती हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: महिला सुरक्षा के लिए हमारे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन इस कानून का बहुत जगह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाओं को जितने कानून दिए गए हैं उसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग अभी के समय में ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे अभी महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, जैसे IPC की धारा 498A, उस जो अब बदल गए हैं BNS 85-86 में, जिसमें हमें दहेज उत्पीड़न से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें

0: को मायके में महिला और उसके मायके वाले को ससुराल वाले क्रूरता से मारपीट करते थे, उनसे दहेज के लिए मांग करते थे, तो उसके लिए एक कानून बनाया गया। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल इस तरह से अभी के समय में हो रहा है कि लोग जानबूझ करके लड़की को फंसा देते हैं इस चीज़ों में कि नहीं, ससुराल वाले मांग नहीं भी करते हैं तब भी मायके वाले ससुराल वाले और ससुराल में उनके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता लड़के लड़की के साथ उसके भाई बहन सबको फंसा करके और लड़कियों से लड़कियों का मोहरा बना करके दहेज की मांग करते हैं। तो इस तरह हमारे कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसके साथ साथ घरेलू हिंसा कानून 2005 में आया था, इसमें मारपीट गाली गलौज आर्थिक तंगी इस सब के बारे में प्रावधान दिया गया था जिसमें मजिस्ट्रेट जो है वो तुरंत सुरक्षा के आदेश दे सकता था। इसके बाद पॉक्सो एक्ट आया जिसमें बच्चों के यौन शोषण के संबंधित कानून सख्त कानून दिया गया था। इसके बाद बलात्कार रेप की धारा BNS 63 में है जिसमें 10 साल तक के लिए उम्र कैद की सजा थी। इसके दुरुपयोग ऐसे हो रहे हैं कि झूठे केस दर्ज कर दिए जाते हैं, समझौतों का दबाव बनाया जाता है, लिव इन और ब्रेकअप का केस कर दिया जाता है, बोला जाता है कि झूठा संबंध बनाया है, अगर लड़का शादी नहीं किया तो जेल चला जाएगा। और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हर ब्रेकअप जो होता है वो रेप नहीं होता, ठीक है। उसके बाद पॉक्सो का भी गलत इस्तेमाल किया, इसमें था कि किशोरों से के सहमति से संबंध बनाए जाते थे लेकिन घर वाले अगर उससे पीछे हट जाते तो उन पे पॉक्सो लग जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ में अपने 2-3 केस के डिसीजन दिए जिसमें से एक केस है अर्नेस कुमार गाइडलाइन 2014 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि 498 में सीधा गिरफ्तारी नहीं होगी, 7 साल से कम के सजा वाला केस है तो उसमें मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी। दूसरा केस आया राजेश शर्मा 2017, उसमें हर जिले में परिवार कल्याण समिति बनाया गया, 498 के शिकायत को पहले देखा गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ा चेंजिंग किया। इसके साथ साथ झूठे केस पर कार्रवाई करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। इसका दूसरा पहलू ये था कि पीड़िता अगर दबाव में आके डर जाती थी और सजा का दर को थोड़ा कम किया गया, जांच का मुद्दा को बदला गया। पुलिस और वकील कहते हैं कि समस्या कानून में नहीं है, गलत जांच और देरी में जो प्रक्रिया होती है उसमें है।
1: कीर्ति जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ऐसे में निश्चित रूप से ये प्रावधान माननीय न्यायालय का है, ये उनकी सोच है कि कोई दोषी छूटे नहीं और कोई निर्दोष इसमें फंसे नहीं। तो आपने महिला सुरक्षा कानून के दुरुपयोग और इससे बचने के उपाय को लेकर काफ़ी अच्छी जानकारी आकाशवाणी के लिए दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी सलाह के अंतर्गत भेंट वार्ता, विषय था महिला उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग से बचाओ। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे अधिवक्ता राजकुमार राजू और अधिवक्ता कृति जया, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारी ओर से सैयद मासूम अहमद। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8:01 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं फार्मेसी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाह सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को उनके दोस्त संजय का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हीरोज से, और इस गीत को सुनना चाहा है जमा मस्जिद रोड हजारीबाग से महावीर लाल चौरसिया, कुंती देवी चौरसिया, आकाश चौरसिया, संगीता देवी, पूजा देवी, जागृति कृष्णकांत और अस्मिता राजनी। इस गीत की फरमाइश आई है छिपाकला बड़का गांव से बाबूलाल।

कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म हीरो से लिया गया ये गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत, और इस गीत को सुनना चाह है मेन रोड बड़कागांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके मम्मी पापा तथा उनके ढेर सारे साथीगण। इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है पंचमंदी रोड हजारीबाग से कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू ने। इस गीत को सुनना चाहे पटेल नगर पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी राजू आरजू जाजोरिया ने।

दोस्तों भी आपने सुना दिलजीत दोसांझ साजिद टंडन और परंपरा टंडन की आवाज में फिल्म बॉर्डर टू से लिया गया ये खूबसूरत सा फरमाइशी गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म मातृभूमि से। और इस गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। इसी गीत की फरमाइश आई है ग्राम शंकरपुर बड़कागांव रोड से युगल कुमार, दिवंती देवी, नीलेश कुमार, अनसुप्रिया। इस गीत को सुनना चाहा है जीटी रोड बरही से सीताराम मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, अनीता देवी, हर्षिका रानी, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी, कुसुम और आर्यन ने। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है खिरगांव माली टोला से कल्लू माली, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार और अनिकेत मालाकार ने।

दोस्तों, भी आपने सुना फिल्म हम दिल दे चुके सनम से लिया गया ये गीत, और इस गीत को सुनना चाहा था ओल्ड लिसनर ग्रुप मगनपुर से अमजद अली और अब्बास आलम ने। इसी गीत की फरमाइश आई थी झुमरी तिलिया से जगन्नाथ प्रसाद साहू की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहा था कोल सिटी बरकाकाना से अबसाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत, और इस गीत की फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर ने। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है सरदार रोड जैन मंदिर हजारीबाग के पास से मोहम्मद मुर्तजा गुलाम, मुर्तजा गुलाम मुस्तफा, राजेश ठाकुर, अजीत ठाकुर और उनके ढेर सारे साथी ने। तो आइए सुनते हैं इन तमाम श्रोताओं की पसंद पर अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: कब ना भूल पाएंगे। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी अलका याग्निक और सोनू निगम की। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने। इसी गीत की फरमाइश आई है दंतरेगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाम दास माणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू और मावली श्रृंगारपुर से सालिक पुजारी की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनिस फातमा, यास्मीन फातमा और सहनवाज फातमा ने।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

और अब दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश गीत। और इस गीत की फरमाइश आई है जामा डोबा से मोहम्मद रफीक अंसारी और बेगम फरीदा रफीक की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम पोचरा निमिया टोला से महेश राम सरिता देवी पिंटू और वर्षा कुमारी ने। इस गीत की फरमाइश लिख भेजी कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

दोस्तों, इसी फरमाइशी गीत के साथ फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपके चाहत से अपने दोस्त संजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फार्मेसी की तो पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और फिर रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।

0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा

0: भाटिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो

0: आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: थैंक यू आशीष सिन्हा फॉर बीइंग विद अस ऑन आकाशवाणी एंड गिविंग अस अ वेरी इनडेप्थ व्यू of the decisions taken by the Cabinet Committee on Economic Affairs on two construction projects that affect the lives of the people in Delhi NCR and Uttar Pradesh. Thank you.
2: Thank you very much.
3: You were listening to a discussion on Union Cabinet Decisions. The participants were Shishir Sinha, Senior Journalist, and Arjun J. Chaudhary, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: Spotlight.

0: उसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नाम

चीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे, नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मेलोडी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम रजनी गंधा।

दोस्तों भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चुपके चुपके से लिया गया ये गीत। वही सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। फिल्म का नाम है चलते चलते।

दोस्तों, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम रजनीगंधा FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से।

कार्यक्रम एक फिल्म से सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1990 में रिलीज हिंदी भाषा की एक बेहद लोकप्रिय एक्शन ड्रामा फिल्म थानेदार से लिए गए कुछ चुनिंदा गाने। दोस्तों, आपको बतला दें कि इस फिल्म का निर्देशन राज एन सीपी ने किया था और इसके निर्माता संजय रॉय और सुधीर रॉय थे। यह फिल्म साल 1990 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म से लिए गए कुछ चुनिंदा गाने।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म थानेदार से लिए गए कुछ चुनिंदा गाने। FM 102.1 MHz पर ही आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है।

रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी

0: P2 Ireland in the last year race. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हो चुके हैं. यही संपन्न होती है हमारी आज की सभा. कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ. तब तक के लिए हमें दे अनुमति. शुभ रात्रि. जय हिंद.